0: ये है लाइका गोल्ड। भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
1: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
0: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
1: गारंटेड।
0: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
1: फोन 02085748410।
0: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: Your call is important to us. You are currently number 25 in the queue.
3: 25? Seriously?
2: Sounds like Ojo time.
3: Nice idea. Feel the fun with Play Ojo, the online casino with all the latest live casino and slot games. New players get 50 free spins on Big Bass Bonanza, plus instant payouts on winnings.
2: Sorry about the wait. How can I help?
3: You can help me celebrate. I won.
4: Feel the fun. Play Ojo.
5: First deposit only. Most wins are instant. 18 plus. Gamble aware. T's and C's apply.
6: Are we there yet?
7: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
6: Relax. I've booked the Uber already.
7: How? My roaming isn't even working yet.
6: I switched to Simzy before we left London.
7: Simzy, since when are you the tech expert?
6: Since I decided I want a stress-free holiday.
8: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
9: T's and C's apply.
10: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

0: जायका गोल्ड
1: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
2: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर
1: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
2: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन
1: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स
2: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50 प्लस एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी
1: एंड द बेस्ट पार्ट टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000
2: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस ऑन 02039635757 Greens by Danube Prime location
1: High appreciation
2: in Dubai
3: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs Pepe's presents
4: Atif Aslam live in the UK
5: Oh Julilal Kalandar mast mast dam
3: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
4: Book your tickets now at AXS.
3: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
4: Exclusive radio partner, Leica Radio.
6: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
7: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
6: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
7: And you didn't pay those massive roaming charges?
6: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
8: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
9: लाइका गोल्ड पर हर रात की यही रीत पुराने मगर सदाबहार गीत
10: के आंगन में मेरे सवेरे सवेरे

0: Like a Gold. CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एज रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में। रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंटिम अपोलो हैमरस्मिथ। हमारे राम, बुक योर टिकट्स नाउ, विजिट www.eventimapolo.co.uk। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका Radio.
1: Fly more, pay less with Leica Fly. Grab cheap flights to India, the Philippines, Africa and Pakistan. Book now, pay later. All ATOL protected. Call 0207-132-0700 or visit leicafly.com. Leica Fly. Fly more, pay less.
2: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@leicamedia.co.uk।
3: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ।

0: Laika Gold. CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एज रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में। रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंटिम अपोलो हैमर स्मिथ। हमारे राम, बुक योर टिकट्स नाउ, विजिट www.eventimapolo.co.uk। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक आर Radio.
1: Packed for the trip? Gifts? Passport?
2: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
1: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
2: Simzy?
1: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
3: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
4: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है। लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं। ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा। संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com।

निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानको सी भी सच सोचे सोच न हो वही जे सोची लखवार चुपै चुप न हो वही जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरिया भार सह स्याण पालक हुए ता इक ना चले नाल

सो मैं विसर ना जाए। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जाणी है नाल चले सब कोए। चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नदर ना

जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पथ्यों प्रगट जाए, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध।

मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोहन लिवलाय तार, कुदरत कौन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भखाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

गावन पंडत पढ़न रखी सर, जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मनमोहन सुरगा मच प्याले, गावन रतनु पाए तेरे अठसठ तीरथ नाले।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी।

अनाहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी हृदय से।

अनाद अनाहत जुग जुग एकोवेश। आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार, कर कर वेखे सृजनहार नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एकोवेश। एक दूजी बोला खोवें लख होवें लखवीस लख।

जोर ना जुगती छुटाए संसार, जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए। राती रुती छित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवान, नदरी कर्म पवे निशान, कच पकाई उथे पाए, नानक गया जापे जाए।

0: इज लाइक अ गोल्ड। ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: विजिट ट्रेवल हब world.com।
2: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage, 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, like our radio.
3: Step into the new grand showroom of Gajul's Couture, Southall.
4: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
3: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
4: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajul's Couture, now open 7 days a week.
3: Gajul's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
5: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
4: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
5: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
4: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
6: Watford mein dinner plans, thoda classy, thoda desi.
7: Then come to Godfather & Company, Vivek House, Bar & Kitchen.
6: From crispy starters, butter chicken, paneer tikka masala to biryani, fresh breads and refreshing drinks.
7: Har bite mein lajawab flavors aur vibe bilkul premium.
6: Friends, family ya special night out, make it memorable.
7: Godfather & Company, taste the legacy, live the moment.
6: Visit Vivek House, Watford. Call 073-00-99-8823.
7: Book your table today.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
8: High appreciation.
9: In Dubai.
10: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
11: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स,
10: मसालेदार मसाला टैंगी टोमेटो सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जयमिन्स पोटैटो चिप्स।
11: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग।
12: बी पार्ट ऑफ अ हिस्टोरिक ग्रैंड ओपनिंग।
4: एक्सपीरियंस द न्यूली इनॉग्रेटेड BAPS स्वामीनारायण मंदिर इन पेरिस, अ वंस इन अ लाइफटाइम स्पिरिचुअल journey.
12: Travel with your family and witness this divine occasion.

0: लाइका गो
1: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com
2: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड
2: विजिट travelhubworld.com
3: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
4: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
3: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
4: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest

0: of townhouses and villas
1: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
0: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
1: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
0: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
1: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
0: high appreciation
1: in Dubai.
0: Watford mid dinner plans, thoda classy, thoda desi.
1: Then come to Godfather and Company, Vivek House, Bar and Kitchen.
0: From crispy starters, butter chicken, paneer tikka masala to biryani, fresh breads and refreshing drinks.
1: Har bite mein lajawab flavors aur vibe bilkul premium.
0: Friends, family ya special night out, make it memorable.
1: Godfather and Company, taste the legacy, live the moment.
0: Visit Vivek House, Watford. Call 073-00-99-8823.
1: Book your table today.
2: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344-24 Power line.
3: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
4: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
3: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
4: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
3: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
4: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
5: Mum always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care, available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
6: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
7: दिस ईद उल अज़हा आई स्टे क्लोज टू व्हाट मैटर्स विद रेमिटली, लाइक सेंडिंग अ लिटिल समथिंग टू Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
8: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Gold Breakfast with Kajal. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: Disha Rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carries, Singsbury's, Kachha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save Canton Road. Disha Rice, come down and taste the difference.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
4: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
3: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
4: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
5: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
6: इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की प्रस्तुति पुरुषोत्तम मास में आइए और दिव्य आशीर्वाद पाइए। 17 मई से 15 जून प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक श्रीमद् भागवत पारायण और शालिग्राम पूजा भगवान विष्णु के हजार नामों के साथ। साथ ही हर शनिवार श्री राज राजेश्वर गुरु जी के साथ सुंदरकांड पाठ और हनुमान चालीसा हीलिंग दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक। स्थान 22 मामस्टल रोड हैरो HA37RR। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 02084260678 और विजिट आश्रम ऑफिशियल वेबसाइट।
7: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए। दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
8: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा Holidays. What's your travel mantra?
9: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy! Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
10: Up next, Ravi Sharma with the Ravi Sharma Show on Leica Gold.
9: Star Track of the Hour, sponsored by Star Tours. 28 years of experience, 40,000 passengers every year. Star Tours is trusted for a reason, by travelers who appreciate familiar comforts. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: कैशियर।
1: गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। लाइका रेडियो नेटवर्क पर लाइका गोल्ड का मनोरंजन प्रोग्राम लेकर मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं और मेरा नाम है रवि शर्मा। थैंक्स टू काजल, छुट्टियां गुजार के लौटी है उत्साह से, ताजगी से भरी हुई। चेहरे पर जो ओज है भाई, वो तेज है, वो बता रहा है कि खूब मस्ती करके आई है। मंगलवार वर्ष 2026 के मई महीने की 26 तारीख, क्या संयोग है। और मैं आपकी सेवा में, मैं एक फूल हूँ या भरा गुलिस्ता हूँ, बताऊँ तुम्हें किस कदर शादमा। हर एक आईने में फकत तू ही तू है, हर एक आईने में फकत तू ही तू है। मैं हैरा परेशान हूँ कि मैं कहाँ हूँ, मैं लौटा नहीं तेरी बाहों से शायद, जरा देखना तो मैं अब तक वहां हूं। ये तेरी मोहब्बत की परवाज तौबा, मैं हूं आसमां पर या खुद आसमां हूं, वो महफिल या तन्हाई तारीफ तेरी, मैं तेरी नजर हूं, मैं तेरी जुबां हूं।
2: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
3: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
4: Travel Hub.
3: At all protected.
2: Leica. Leica Radio Network.
1: लीजिए सब आगाज करें प्रोग्राम का, दुआ सलाम हो जाए पहले। Good morning.

0: तुमसे मिलकर कुछ याद आता है। अरे बहुत कुछ याद आता है, होता है भाई कुछ लोगों से मुलाकात के बाद, और अक्सर जब कि वो बहुत अरसे बाद मिल रहा हो तो बहुत सारी बातें याद आती हैं। कहते हैं जिंदगी में, अपनी जिंदगी के इतिहास में जब झांकते हैं, कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं, कुछ दुश्मन भी याद आ जाते हैं, पर अपने सपने खिलखिलाते हैं, मुस्कुराते हैं जब उनके आमने सामने भाई लोग होते हैं, आते हैं।
1: Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK. आज का रेट में बता रहा हूँ भाई, अपनों को पैसे भिजवाने हो तो मौके का फायदा उठाइए। SBI UK says that today's they are giving for £1. Today's rate is 128.3 rupees. 128 रुपये 30 पैसे का रेट चल रहा है। और भाई एक ख़ास बात और याद दिला दूँ आपको कि ये तो है एक पाउंड के बदले का रेट, लेकिन इफ़ यू सेंड मोर देन 1000 पाउंड्स और आप भेजते हैं SBI योनो के माध्यम से या SBI की ब्रांच में जा कर के, तो भाई यू विल बी इन टू विन ए 75 पाउंड्स वाउचर डेली वेन यू सेंड ओवर 1000 pounds and get 1 gram gold coin when you send over 2000 pounds. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.

0: Feel good track brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: लाइका रेडियो नेटवर्क, अब आप रवि शर्मा से आज की खास खास खबरें सुनिए। अनदर हीट रिकॉर्ड ब्रोकन ओवरनाइट एज टू मोर टीनेजर्स डाई इन वाटर। लोग भाई बच्चे खासकर जो है पानी में तैरना पसंद करते हैं, लेकिन हादसे का शिकार भी हो जाते हैं कुछ बच्चे, तो बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। ये मौसम वाल अपने क्या कहते हैं कि अच्छे रूप से अब थोड़ा सा गंभीर रूप में शामिल हो रहा है, एंटर हो रहा है। ये तो यहाँ की खबर है भाई, रिकॉर्ड टूटने की आशंका बताई जा रही है, लेकिन विश्व स्तर पर जो समाचार है, पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ चीन के दौरे पर हैं। इस दौरान पाकिस्तान और चीन ने आज एक साझा बयान जारी किया है। पाकिस्तान ने कहा है कि अपने मुल्क में चीन के लोगों को प्रोजेक्ट्स और संस्थानों की सिक्योरिटी के लिए खास कदम उठाएगा पाकिस्तान। चीन ने कहा है कि वो पाकिस्तान की टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई की हिमायत करेगा। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की ओर से जारी साझा बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान ने चीन को जम्मू और कश्मीर की ताज़ा स्थिति बताई है, जिस पर चीन ने कहा है कि ये विवाद बहुत पुराना है। इसे यूनाइटेड नेशंस चार्टर, सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्तावों और द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाना चाहिए। ईरान पर नए हमलों के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने समझौते के ऊपर एक बयान दिया है। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर ने आज कहा कि ईरान के साथ समझौता अभी भी संभव है। ये बयान अमेरिका के साउथ ईरान में किए गए नए हमलों के बाद आया है। दरअसल अमेरिकी फौज ने बताया था कि ईरानी मिसाइल ठिकानों और उनके जहाज़ों को निशाना बनाया गया है, जो समंदर में बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक बयान में कहा कि ये हमले आत्मरक्षा में किए गए हैं, अपनी हिफाजत के लिए किए गए हैं, और उनका मकसद ईरानी बलों से सैनिकों को होने वाले खतरे को बचाना था, खतरे से बचना था। इन हमलों के बावजूद भी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने समझौते की संभावना से इनकार नहीं किया है, यानी समझौता अब भी हो सकता है। भारत से आने वाली खबरों में केरल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इलेक्शंस के नतीजे आने के बाद राजधानी तिरुवनंतपुरम में झड़पों की खबरें आ रही हैं। ये टकराव कल सोमवार रात यूनिवर्सिटी इलाके के पास स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के जश्न मार्च के दौरान हुआ। एसएफआई नेताओं ने इल्ज़ाम लगाया कि केरल स्टूडेंट्स यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जुलूस पर पत्थर फेंके और एक पुलिस की गाड़ी को नुकसान पहुँचाया। पता चला है कि रोहतक जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 30 दिन की पैरोल दी गई है। डेरा के एक स्पोक्स पर्सन ने बताया कि पैरोल अवधि के दौरान राम रहीम अपने सिरसा स्थित डेरे के हेडक्वार्टर में रहेंगे। दो साध्वियों से दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा काट रहे डेरा प्रमुख फिलहाल हरियाणा की रोहतक स्थित सुनारिया जेल में बंद हैं। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जोसेफ विजय ने सीमांत किसानों के सहकारी बैंकों से लिए गए 50,000 रुपए तक के फसल लोन माफ कर दिए हैं। जोसेफ विजय ने कल सोमवार को यह ऐलान भी किया कि जिन बड़े किसानों ने सहकारी बैंकों से फसल लोन लिया है, उन्हें भी 5,000 रुपए की राहत दी जाएगी। ये ऐलान सेक्रेटरिएट में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के बाद किया गया। भारत और अमेरिका के बीच क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के एक अहम समझौता हुआ है। बताया जा रहा है कि ये समझौता नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मौजूदगी में कहा कि ये समझौता बिल्कुल सही समय पर हुआ है और ये बहुत ज़रूरी है। जयशंकर ने बताया कि समझौता मजबूत और अलग अलग सप्लाई चेन बनाने में मदद करेगा और प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने में भी मददगार साबित होगा। रूबियो ने भी अमेरिका समर्थित पैक्स सिलिका पहल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसकी नींव 4 फरवरी को रखी गई थी, जबकि भारत वाशिंगटन डीसी में हमारे क्रिटिकल मिनरल्स फोरम में शामिल हुआ था। इसके बाद भारत की पैक्स सिलिका से जुड़ने पर और रफ्तार मिली है इसे। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने लिखित एक संदेश पैगाम जारी किया है। ये संदेश सरकारी टेलीविजन पर भी प्रसारित किया गया। खामनेई का ये पैगाम ताज़ा अमेरिकी हमलों के बाद आया है। अमेरिकी फौज ने कहा है कि उसने साउथ ईरान में नए हमले किए हैं, जिनमें ईरानी मिसाइल ठिकानों और उसके जहाज़ों को निशाना बनाया गया, जो समंदर में बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रही थी। मार्च में सुप्रीम लीडर चुने जाने के बाद खामनेई पब्लिकली कहीं नजर नहीं आए हैं। अब तक उन्होंने जितने भी बयान जारी किए हैं वो लिखित रूप में वो जारी हुए हैं। कतर की फॉरेन मिनिस्ट्री ने उन रिपोर्ट्स को खारिज किया है जिनमें ये दावा किया गया था कि ईरान को 12 अरब डॉलर की पेशकश की गई है। कतर की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन माजिद अल अंसारी ने कहा कि ऐसी रिपोर्ट्स उन लोगों की ओर से फैलाई जा रही हैं जो इस समझौते को बिगाड़ना चाहते हैं। दरअसल समझौता ईरान और अमेरिका के बीच चल रही शांति बातचीत से जुड़ा है। ईरान चाहता है कि कतर में रखे गए उसके लगभग 12 अरब डॉलर के जमे हुए फंड को जारी किया जाए और कुछ रिपोर्ट्स में इसे ही समझौते की पहली शर्त माना जा रहा है। हालांकि अब कतर ने कहा है कि उसने ईरान को कोई पैसा देने की पेशकश नहीं की है। पेट्रोल और डीजल के बाद कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के भी अब दाम बढ़ रहे हैं। आज यानी 26 मई को सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। भारत से आने वाली इन खबरों में ये जिक्र है। अब देश की राजधानी में सीएनजी की कीमत 83.09 रुपए प्रति किलोग्राम होगी और ये 15 मई के बाद चौथी बढ़ोतरी है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कॉर्नी ने कहा है कि उनकी भारत के साथ फ्री ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है। मार्क कॉर्नी का मानना है कि भारत के साथ ये डील होने पर कनाडा के लिए एक बड़ा बाजार खुलेगा जो वहां के कारोबार के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
2: ये है लाइका गोल्ड। Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
4: Tere naina,
5: tere naina, tere.
6: तुम ऐसा करो, ये गाओ।

0: सुरेश वाडकर और अनुराधा पोडवाल की आवाजें सुन रहे थे आप, दो सुरीली आवाजें। फिल्म भ्रष्टाचार से हमने ये गीत सुनवाया आपको।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय कोका नूडल्स इज कमिंग विद मोर फ्लेवर्स एंड हेल्दी ऑप्शन इन अ कन्वीनियंट बोल। कोका नूडल्स, क्विक एंड टेस्टी नूडल्स इन 12 फ्लेवर्स।
2: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: और साहब, साउथ हॉल ट्रेवल का संदेश आपके नाम, मेक दिस समर मेमोरेबल विद साउथ हॉल ट्रेवल। एक्सप्लोर बीच ब्रेक्स, सिटी एस्केप्स एंड मोर विद हॉलीडे डील्स दैट इंक्लूड फ्लाइट्स, होटल्स एंड एट ऑल प्रोटेक्शन। 40 वर्षों से भी ज़्यादा समय से भाई भरोसेमंद लोगों के विश्वास के सिंबल बन चुके हैं साउथ हॉल ट्रैवल, और ब्रिटिश ट्रैवल अवार्ड के विजेता भी हैं साउथ हॉल ट्रैवल। विजिट साउथ हॉल ट्रैवल और कॉल 0208-574-8410।
2: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
3: Like a gold.
0: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on travelhubworld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। Call Travel Hub 24/7 on 0208-782-8833 और visit travelhubworld.com.
4: Travel Hub, best service with unbeatable price.
0: At all protected.
4: Visit travelhubworld.com.
5: राम कृष्ण हरी यूके तैयार आहात ना? ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार व्हायला येत्या 6 जून ला होते है वाद्य महोत्सव 2026 रॉयल विंडसर रेस कोर्स SL4 5JJ। 100 ढोल, 80 ताशे, मराठी खाद्य संस्कृतीची चव घ्यायला आणि मराठी उद्योजकांना भेटायला नक्की या। महाराष्ट्राची परंपरा, संस्कृती आणि आनंदाचा जल्लोष आणि विठ्ठल नामाचा गजर हा सोहळा तुम्हाला लाइव्ह बघायला नक्कीच आवडेल। थेट भारत

0: Laika Gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: And let me tell you the rates they're giving at this moment. By 1 pound ke badle in Indian currency, they are giving 128.94 rupees. Pakistani, 375.25 rupees. Sri Lankan rupee, 438.7. Bangladeshi takas, 165.46. And Afghani, 85.14.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LAIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: LAIKA Gold.
0: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: The gold is sold at the rate of 107.88 pounds per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
2: Laika Gold.
0: India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
1: भाई आईपीएल जो है अपने चरम पर पहुंच चुका है और अब जो प्लेऑफ के मैचेस हैं वो शुरू हो रहे हैं. आज मुकाबला है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का. देखते हैं इनमें से कौन चैंपियन बनता है. भाई टोटल अब बाकी रह गए हैं 3 मैच, आज के मैच को मिलाएं तो 4 मैच रह गए हैं. तो टोटल 74 मैचेस खेले जाने हैं. आज का ये जो मैच है बताएगा कि कौन सी टीम आगे जाएगी. बट लेट मी टेल यू, मैच की एक ख़ास बात भाई, राजस्थान रॉयल्स के वो प्लेयर आप भूल नहीं सकते उन्हें, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी. एक इंटरव्यू में उन्होंने एक बयान दिया है जब उनसे केविन पीटरसन ने कहा कि ये धुआंधार बल्लेबाजी करके कैसा महसूस करते हो जो इतने 50s बनाए हैं आपने. कहते हैं 50s से मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता, मैं तो शतक और दोहरे शतक पर नज़र जमाए हुए हूँ. क्या बात है. कहते हैं मैं क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ना चाहता हूँ. क्रिस गेल ने भाई कितने रन बनाए थे, 175 जो है वो मैक्सिमम रन्स का स्कोर T20 में रखा हुआ है उन्होंने, उसको तोड़ के 200 के आंकड़े पर नजर रखे हुए हैं. वैभव सूर्यवंशी ऑल द बेस्ट, जीते रहो बेटा.
0: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय रेमिटली, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस. डाउनलोड द रेमिटली ऐप टुडे. रेमिटली यूके लिमिटेड इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द FCA. दिस इज द LAIKA रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर and the Midlands.
4: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
5: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ.
4: ये तो बताओ कोई पता चला?
5: गुरु गुरु,
6: इस 19 जून को द प्रिंस रीजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है. सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून.
4: साधु तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
7: शीघ्र शीघ्र.
6: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन 19 जून. टू बुक कॉल 0208-514-5400. बुक ऑनलाइन एट Eventbrite.
2: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर LAIKA गोल्ड.
8: सेलिंग योर कार कैन बी सुपर सिंपल if you choose We Buy Any Car instead of a confusing part exchange. Because with We Buy Any Car, you'll have cash in the bank for more bargaining power on your next car. If only they could make getting to that countryside wedding simpler.
9: Make a U-turn. Make a U-turn.
8: Oh, no. We Buy Any Car. Selling made simple. To get a quote in 30 seconds, enter your reg number now at webuyanycar.com.
10: किटी पार्टी हो या बिजनेस मीटिंग या कोई खास सेलिब्रेशन, अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को. स्वादिष्ट खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड. तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823.
7: ZTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, event in Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Laika Radio.
11: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
12: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
11: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
12: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
13: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
14: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel, and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
15: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।

स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में। मेरा नाम रवि शर्मा है और बहन भाइयों, कार्यक्रम के दूसरे दौर में हम आपका स्वागत चिंतन से किया करते हैं। चिंतन का मतलब है विचार। आज का विचार, चिंतन करना, विचार करना, सोचना। और ये वो सोच वैसी नहीं है जो नींद उड़ा दे, ये सोच है गंभीर विचार, सात्विक विचार, ऐसा विचार जो मन में एक तरह की भाई यूँ कहिए कि ऐसी खलबली मचाता है कि जीवन को प्रशस्त बनाने के लिए रास्ता दिखाता है। अच्छी बातों पर विचार, अच्छी सोच पर विचार, अच्छे इरादों पर विचार। और आज के विचार में भाई एक बात शामिल करते हैं। कुछ लोगों को शिकायत है कि उन्हें रात भर नींद नहीं आती। हम चिंतन में शामिल कर रहे हैं ईस्ट लंदन से पवन शर्मा का भेजा आलेख। पवन कहते हैं कि नींद ना आने का कारण क्या हो सकता है, कई कारण हो सकते हैं। और भाई ऐसे में लोग कोशिश करते हैं कि नींद आए, कुछ लोग नींद की गोली खाने लगते हैं जो बहुत ठीक नहीं है। दुनिया भर में लाखों लोग नींद की ना आने से परेशान हैं। कुछ को सोने में वक्त लगता है और कुछ तो अनिद्रा के शिकार जिन्हें नींद आती नहीं। हर किसी की चाहत है कि उन्हें जल्दी नींद आ जाए, लेकिन कुछ स्टडीज से पता चलता है कि 5 से 50% तक लोग अनिद्रा के शिकार होते, नींद ना आने का दर्द झेलते हैं। अब है ना भाइयों, इस मामले में अपुन बहुत लकी है। बेड में जाते ही विद इन 2-3 मिनट्स गायब। अब उसके बाद चाहे ढोल बजाते रहे, भाई मैं तो सो जाता हूँ। लेकिन कभी कभी कोई ऐसी घटना घटती है। अब जैसे बता दूँ आपको भाई, और पवन भाई आपको भी बता दूँ, पिछले 3-4 दिनों से मेरा व्हाट्सएप हैक हो चुका है। और जिसने भी हैक किया है, कोई क्लेवर आदमी भाई, वो उनका धंधा यही लगता है कि वो मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स उनके पास चले गए, मेरा वो यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, समझिए कि दुरुपयोग कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी फ़ोटो, मेरा व्हाट्सएप नंबर, उससे मैसेज भेजते हैं मेरी तरफ से, यानी रवि शर्मा उनको मैसेज भेज रहा है कि मैं थोड़ा मुसीबत में हूँ, मेरी मदद करो, कुछ पैसे भेज दो। अब है ना भाई, मैं रोज़ रेडियो पे बोल रहा हूँ, जो सुनते हैं, जो जानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी तो हैं जो रेडियो नहीं सुन पाती या दूर दराज बैठे हैं। और मेरे हज़ारों कॉन्टैक्ट्स हैं बहन भाइयों। अब हुआ क्या कि उसमें लिखा गया मैसेज, पहले वो कहते भाई कोई बात करना चाहे तो बात नहीं कर रहे हैं, इस समय मैं बात नहीं कर सकता, बस मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ पैसों की सख्त ज़रूरत है, मैं कल सुबह तक आपको वापस लौटा दूंगा, लेकिन मुझे इतने पैसे इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। बहुत सारे लोग जानते हैं कि ये स्कैम है और बहुत चल रहा है, लेकिन भाई जो लोग मुझे बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं, जो लोग ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि भाई मैं किसी कष्ट में, किसी तकलीफ़ में हूँ और मदद मांगूँ और वो ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो साहब, अब हमारे एक प्यारे मित्र ने जब 500 पाउंड भेज दिए, 500 पाउंड ही मांगते हैं, 500 पाउंड ट्रांसफर इन दिस अकाउंट नंबर, नाम और है अकाउंट नंबर। कभी एक बार तो अकाउंट नंबर वो दे रहे थे लॉयड्स बैंक का, एक बार दे रहे हैं बिल्डिंग सोसाइटी का। भाई इस बात को लेकर के मैं बहुत परेशान हूँ, और यकीन मानिए एक पूरी रात तो मैं सो नहीं पाया। उसके बाद जितने तरीके मुझे बताए गए उन सबको फॉलो करने की कोशिश की, क्या है ये ब्लॉक कर दो, ये कर दो, पर मेरे पास तो व्हाट्सएप का अकाउंट है ही नहीं, वो तो हैक हो चुका है, वो तो उनके पास है। अगर आप उस पर कोई मैसेज लिखेंगे तो उनको जाएगा, वो जवाब देंगे। और मज़े की बात देखिए, मेरी वाइफ ने घर से ही मुझे व्हाट्सएप पर कोई संदेश भेजा, वो भी उनको गया। अब उसमें ये स्पष्ट नहीं होता कि वो मेरी वाइफ है, उसमें तो ये लगता है भाई किसी लेडी ने लिखा है कि आप कहाँ हैं, कब लौट रहे हैं, कब आ रहे हैं। अब ये सवाल सीधा साधा था, वहाँ से जवाब आता है मेरी तरफ से, मेरी तस्वीर के साथ, मेरे अकाउंट नंबर से, व्हाट्सएप से, मैं किसी मुसीबत में फंस गया हूँ, फ़िलहाल ऐसा करो कि 300 पाउंड्स
देखो इतनी मेहरबानी की, 500 से 300 पे आ गए, 300 pounds जो है तुरंत ट्रांसफ़र कर दो इस अकाउंट में, मैं बाकी जो है बाद में बताऊंगा आपको। लेकिन साथ में ये भी लिखते हैं कि सुबह होने तक मैं आपके ये पैसे लौटा दूंगा, पर फिलहाल मैं मुसीबत में हूँ। अब सोचने वाली बात है भाई, मेरी पत्नी इतना तो सोच ही सकती है कि आज तक तो कभी लौटाने की बात की नहीं, और लौटाने का हमारे में तो होता ही नहीं है भाई। मैं अपनी पत्नी को पैसे दूँ या पत्नी मुझे पैसे दे, पैसे तो एक ही जेब से आ रहे हैं ना, एक ही घर से आ रहे हैं, हमने तो कभी पैसों का हिसाब किताब नहीं किया। तो वो एकदम सोच जाती है कि कुछ गड़बड़ हो गई है अकाउंट के साथ, और उन्होंने तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। कुछ दोस्तों ने उनको भाई तंग भी किया कि मैंने तो अभी अभी मिलियन पाउंड्स तो आपको ट्रांसफ़र किए, अब और कितने चाहिए, डांट के कहा। लेकिन साहब कुछ शरीफ सज्जन और मैं कहूँगा मासूम दोस्त, और सबसे बड़ी बात मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले लोगों ने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जब मुझे पता चला मैं नहीं सो पाया। ना सोने के और भी कारण हो सकते हैं बहनों भाइयों, लेकिन पवन भाई कहते हैं कि टेंशन सबसे बड़ा कारण है, स्ट्रेस, परेशानी, और इस परेशानी से कैसे छुटकारा पाएं। जब मैंने अपने उन दोस्त को कहा, अरे भले आदमी पैसे ट्रांसफ़र करने से पहले एक फ़ोन तो कर लेते, कहते भाई साहब आपका फ़ोन मिल ही नहीं रहा था। मिले कैसे, वो फ़ोन उठाएंगे नहीं भाई, वो फ़ोन व्हाट्सअप पे कर रहे थे। और जानते हैं आप, जो दूर दराज से विदेशों से खासकर लोग जो फ़ोन करते हैं व्हाट्सअप पे करते हैं। आजकल व्हाट्सअप इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है कि नॉर्मल फ़ोन पे लोग फ़ोन ही नहीं करते, बोले फ़ोन नहीं मिल रहा था और आप मुसीबत में हो, ये मुझसे सहा नहीं जा रहा था। बहन भाइयों, ऐसा कोई भी संदेश आपके पास आए किसी की तरफ से, मेरी तरफ से आजकल तो चल रहा, वो 3-4 दिन हो गए हैं, कई बार ब्लॉक किया, फिर किस तरह से वो हैक कर लेते हैं, मतलब पहले बिल्डिंग्स, पहले लॉयड्स बैंक के अकाउंट भेज करके पैसे मांग रहे थे, अब वो बिल्डिंग सोसाइटी हैलिफैक्स के अकाउंट में पैसे मांग रहे हैं, नाम बदला हुआ होता है, लेकिन मेरे फ़ोन से मेरे नाम से मैसेजेस जा रहे हैं, और पैसे मेरी पॉकेट से नहीं जा रहे हैं पर जिनकी पॉकेट से जा रहे हैं, मेरे प्रिय हैं, मेरे शुभचिंतक हैं, मेरे दोस्त हैं, जानने वाले हैं, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। हालांकि लोग, काफ़ी लोग समझदार और इस सूझबूझ से काम ले करके कि भाई ये स्कैम हो सकता है, पर बहुत ज़्यादा प्यार भी दुखदाई हो जाता है, नींद उड़ा देता है, चैन गंवा देता है। अब साहब नींद न आने की बीमारी के बारे में जिक्र करते हुए चिंतन कहीं और मुड़ गया। मैं ये कहना चाहता हूँ बहनों भाइयों कि पहले नींद न आने का जो कारण है ना, जैसे कि मेरे वो दोस्त जिन्होंने पैसे ट्रांसफ़र किए, कहते हैं क्या हुआ तुम्हारे ऊपर, तो मैं पता नहीं कितने पाउंड्स जो है वार के दान कर सकता हूँ। अरे आप कहीं एक पैगाम पे, ये तो चलो किसी गलत आदमी को गए, गलत तरीके से गए, लेकिन अगर सीरियस होता तो फिर 500 pounds की बात ही क्या है। कुर्बान जाऊं तुम्हारी प्यार पर, दोस्ती पर, लेकिन मेरे दोस्त फिर भी ये दुखदायक है, और उनका हौसला बढ़ता है, उन चोरों का, उन ठगों का, उन पापियों का, हराम के खाने वालों का, वो उनका हौसला बढ़ता है, वो और लोगों को शिकार बनाएंगे। इसलिए भाई मेरी नींद उड़ी हुई है, अच्छी नींद लेने के लिए सबसे पहले मेरे दोस्त कहते हैं कि इसको झटक दो, भूल जाओ, भूल जाओ, बहुत कमाएंगे, ये सोचो कि देखो मैं कितना और कमा रहा हूँ, मेरा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, ये सोच करके खुश हो जाओ। बहनों भाइयों, कुछ नेगेटिव लाइफ में होता है, पर उस नेगेटिविटी को जितना जल्दी हो सके झटक दो तो ही नींद आएगी। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन हॉस्पिटल के स्लीप क्लिनिक के लीड डॉक्टर ह्यूग सेल्सिक कहते हैं कि ये नींद ना आने की जो परेशानी है ना, लोग ये एक मिलिट्री तरीका अपनाएंगे तो कामयाबी मिलेगी। अब ये मिलिट्री तरीका क्या है भाई, ट्रेनिंग दी जाती है मिलिट्री में लोगों को कैसे सो सकें वो, और सेल्सिक कहते हैं कि 8 घंटे की नींद का आइडिया एक मिथक है लेकिन काफ़ी नुकसानदायक भी। भाई औसतन 6 घंटे आप सो सकें तो मज़े में आप रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और प्रसन्नचित भी रहेंगे। लेकिन आपको बता दूं बहन भाई, मैं तो 4 घंटे सोता हूं, 4 घंटे के बाद आंख खुली जाती है, कुछ भी हो जाए, पर वो 4 घंटे ऐसी नींद सोता हूं कि यूँ समझ लो कि सोने से पहले मैं अपने तमाम घोड़े बेच देता हूं, मैं घोड़े रखता नहीं अपने पास। तो इसलिए
सोना है तो नेगेटिविटी को झटकना है, उसको क्या कहते हैं कि वो धोबी पाट मार के पटकना है और पॉजिटिविटी को अपनाना है। ये सोच, ये विचार के जब जब जो जो होना है वो होके रहेगा। परवाह मत करो, जिंदगी चलती रहेगी। अपनी परेशानी को दूर करना है ना तो अच्छी बातें सोचो। सोने से पहले थोड़ा हाथ मुंह धो के स्वच्छ वातावरण में। हाँ, मोबाइल फोन को एक तरफ रख दो, कोई पुस्तक पढ़ना शुरू करो, जैसे ही थोड़ी नींद आए लाइट बुझा दो, फिर देखो मीठी नींद आएगी। आदत डाल लो, मोबाइल फोन से बचो रात को, नहीं टीवी से बचो रात को, सोने से पहले टेलीविजन मत देखो, बस अच्छा सोचते सोचते सो जाओ। वो तो होके रहेगा, जो होना है, फिर चिंता किस बात की।

एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि दिन में झपकी लेने से बचे, फिर रात को अच्छी नींद आती है। तब तक बिस्तर पर ना जाएं जब तक कि नींद ना आए, नहीं तो करवटें बदलते रहोगे। नींद को माँ भगवती के स्वरूप में देखते हैं हम। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।

0: जब जब
1: जब जब जो जो होना है तब तब वो होता है। अब आप कहेंगे साहब ठीक है नेगेटिविटी को झटक दें, नींद अच्छी आएगी, लेकिन बार बार जब ऐसे संदेश मिलते हैं, अभी निरंजन भाई फोन करके बता रहे हैं, मुझे भी आया था रवि जी आपका वो मैसेज, इस बार आपने सिर्फ 100 पॉइंट्स मांगे थे उनसे तो भाई, और मैं भेजने भी लगा था कि कब कब रवि पैसे मांगेंगे मुझसे, कभी मांगे नहीं। अरे भाई यही सोच करके पैसे मत भेजना, स्कैम है, बहुत चला हुआ है।

पुलिस को रिपोर्ट करो, पुलिस कहती है कि जी वो साइबर क्राइम के लिए हमारी एक अलग टीम है, अलग सेक्शन है, और बैंक हॉलीडे चल रहा है इसलिए बैंक हॉलीडे पे आप कुछ नहीं कर सकते, वेट करो मंगलवार को रिपोर्ट करना। पुलिस तो आजकल छोड़िए साहब, क्या रखा सच्ची बातों में।

0: अच्छी नींद के लिए, स्ट्रेस से छुटकारा, चिंताओं से छुटकारा, मुक्ति, जो हो गया है उसे जल्दी कोशिश करो कि सुधार सकते हो तो ठीक है, नहीं तो उसको भुलाने की कोशिश करो। आज का चिंतन, आज का विचार भाई इलफोर्ड से पवन शर्मा का आलेख हमने प्रोग्राम में शामिल किया।
1: चिंतन, चिंतन।
0: अच्छी नींद के लिए, गहरी नींद के लिए दिन में झपकी ना लें, परेशानियों से छुटकारा, सोने से पहले टीवी और मोबाइल फोन का प्रयोग बिल्कुल ना करें, और बेड में तभी जाएं जब नींद आ रही हो, ताकि जाते ही आप नींद की आगोश में खो जाएं। नींद आराम देने वाली, स्वस्थ देने वाली, स्वास्थ्य, हाँ हेल्थ, अच्छी हेल्थ चाहिए तो नींद जरूर लो। और नींद तो माँ भगवती की गोद है, जिसमें जाकर के आप अपने आप को कितना फ्रेश महसूस करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। आज का चिंतन, आज का विचार अब समाप्त होता है। याद दिला दूं, चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन में शामिल होता है।
1: चिंतन, चिंतन।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: लीजिए साहब, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का संदेश और रेट मैं बताने लगा हूँ, नोट कीजिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहती है कि भाई रेट अच्छे चल रहे हैं, अगर आप पैसे अपनों को भिजवाना चाहते हैं, भारत पैसे भिजवाना चाहते हैं तो सही समय है। एक पाउंड के बदले टुडे दे आर गिविंग 128.3 रुपीस, 128.30 रुपये भारतीय मुद्रा में, भारतीय करेंसी में। एंड सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और SBI की किसी ब्रांच के थ्रू भेजते हैं, पर जून के एंड से पहले भिजवाइए, क्योंकि इस दौरान बी इंटू विन ए 75 pounds वाउचर डेली व्हेन यू सेंड ओवर 1000 pounds। इसके अलावा गेट 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 pounds। TNC अप्लाइज। तो भाई ये चांस है, ये अवसर है, इसका फायदा उठाइए। रेट है 128.3 रुपीस फॉर 1 pound।
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Gold.

0: की नजर,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक। माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स
2: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एज रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में। रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंटिम अपोलो हैमर स्मिथ। हमारे राम, बुक योर टिकट्स नाउ, विजिट www.eventimapolo.co.uk। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक आर Radio.
3: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 24-hour line. The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
4: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
3: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
4: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
5: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
6: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
5: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
6: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
5: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
6: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
5: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
6: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
7: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
8: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
7: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
8: गारंटेड।
7: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
8: फोन 0208574-8410।
7: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574-8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
9: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
10: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स।
9: मसालेदार मसाला, टैंगी टोमेटो, सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जयमिन्स पोटैटो चिप्स।
10: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग।
11: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
12: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
11: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
12: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
11: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
12: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
13: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
14: No worries. I'm having fun on Play Ojo.
15: Keep it fun with Play Ojo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
13: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
14: Thanks. Playtime's over. Mmm. Lovely.
16: Feel the fun. Play Ojo.
17: 18 plus, gamble aware.
2: Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
18: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
19: Travel Hub.
18: At all protected.
2: Leica.
20: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. Start with BAPS's Swaminarayan Mandir Darshan in Paris, then explore Europe's most iconic destinations. Call today on 0208 900 2323.

0: बैक टू बैक संगीत सुन रहे थे आप, दो गीत हमने परोसे। द सॉन्ग यू वर जस्ट लिसनिंग टू वाज टेकन फ्रॉम द फिल्म खुदगर्ज, और इससे पहले जो गीत हमने आपको सुनवाया था वो गीत क्या कव्वाली थी, हमारे कव्वाली प्रेमी भी भाई जुड़े रहते हैं, तो वो गीत भैया वो कव्वाली अनोखी अदा फिल्म से थी, हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया।
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
2: फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली,
1: सॉफ्ट एंड टेंडर लाइक ग्रैंडमास वार्म हग, डेरी वैली पनीर इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड जीरो प्रिजर्वेटिव्स, विजिट dairyvalley.net।
0: ये भाई बांसुरी की धुन सुनकर के आप गीत को पहचान लेते हैं, शब्दावली को जान लेते हैं, याद आते हैं मनोज कुमार साहब हिमालय की गोद में। सोचा नहीं था ऐसी होगी वो, इतनी खूबसूरत चांद जैसा मुखड़ा।

0: Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: Like a goal.
0: Like a extra podcast update.
4: और लाइक एक्स्ट्रा पर भाई हमारा नया एपिसोड अब आ चुका है पॉडकास्ट का, और ये दीप राजा द्वारा होस्टेड है। टाइटल है डोमेस्टिक वायलेंस, वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो भाई इस डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो सिर्फ फिजिकल अब्यूज ही होता है, या जो कहा सुनी होती है, जो भाई बातों में टॉर्चर किया जाता है वो भी उसका हिस्सा है, और मेंटल एंड हेल्थ ट्रॉमा ऑफ सर्वाइवर्स एंड वेयर एक्सेसिबल सपोर्ट इज अवेलेबल, ऑल दीज थिंग्स आर डिस्कस्ड इन दिस

0: sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: और भाई लैम्फाई के रेट्स नोट कीजिए, इस समय एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग इन इंडियन करेंसी 129.03 रुपीस, पाकिस्तानी 375.17 रुपीस, श्रीलंकन 442.27 रुपीस, बांग्लादेशी टकाज 165.46 एंड अफगानी 85.12.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
2: The gold is sold at the rate of 108.31 pounds per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at East Ham, Hounslow or Crowley. India Cricket Score Updates, brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England Cricket.
2: आज का मैच टाटा आईपीएल 2026 में नोट कर लीजिए भाई, आरसीबी वर्सेस जीटी यानी गुजरात टाइटंस। बेंगलुरु और गुजरात के बीच जमेगा भाई जोरदार मुकाबला। आज दोपहर बाद 3 बजे से मैच शुरू होगा और स्कोर के आंकड़े हम आप तक पहुंचाएंगे। कल खेला जाएगा मैच सनराइजर्स हैदराबाद एंड राजस्थान रॉयल्स के बीच और सबकी आँखें लगी हैं वैभव सूर्यवंशी पर, क्या वो रिकॉर्ड बना पाएंगे। बट टीनेजर हैं, लेकिन ये तो पक्का है कि जैसे ही वो एज में क्वालिफाई करते हैं तो भारतीय टीम में उनकी जगह पक्की रहेगी। पर लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुडे आफ्टर 3 PM, वी विल कीप यू इन्फॉर्म्ड विद द स्कोर। जुड़े रहिएगा हमारे साथ लाइका रेडियो नेटवर्क पर।
1: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय रेमिटली, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस। डाउनलोड द रेमिटली ऐप today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
3: Yeah, hey, hey, hey, like a go-

0: मौलवी साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।

दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला ला ला ला ला ला ला बस बस बस बस बस बस बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया। म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए। रेडी 1 2 3 4

हो गया प्यार प्यार प्यार, तो भाई दे दे उपहार उनको जिनका आज जन्मदिन है। किसका जन्मदिन है? जसुबेन लिख रही हैं, रवि भाई गुड मॉर्निंग, आई वांट टू विश बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू माय नीस दीपा, हर बर्थडे वाज यस्टरडे। कल मैंने इंतजार किया कि आप फोन करेंगी हैप्पी बर्थडे कहने के लिए, टैक्स भेजेंगे, नहीं भेजा आपने। शी सेज आई डिडंट गेट चांस मैसेज भेजने के लिए, आज मेरे पास समय है। दीपा हैप्पी बर्थडे टू यू बिलेटेड फ्रॉम जस्सू मासी, नरेंद्र मासा अने रीना सुजी फाल्गुनी एंड जय।

0: प्यार तो होना ही था भाई। जसुबेर आप कहती है कि मैंने रिकॉर्ड करना मैसेज, आजकल रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती, आर्काइव में हमारे कार्यक्रम रहते हैं, आप जब चाहें जो चाहें निकाल सकती हैं। आप हमारे उस पर ऐप पर जाइएगा और उसमें सारे कार्यक्रम हमारे मौजूद रहते हैं आर्काइव में, जो रिकॉर्डिंग आप चाहे निकाल सकती हैं। बहुत सारे लोग निकालते हैं। अब बस करो यार, हो गया तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं, हो गया प्यार, प्यार प्यार प्यार हो गया हो गया।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके। भाई फिर दोहरा रहे हैं, याद दिला रहे हैं, पैसे भिजवाना चाहते हैं अगर भारत तो भाई फ़ायदा उठाइए। एक स्पेशल ऑफर जुड़ गई है उनकी इस रेट के साथ। रेट तो आज का मैं बता दूं कि टुडे फॉर वन पाउंड दे आर गिविंग 128.3 रुपीज़, 128 रुपये 30 पैसे भारतीय मुद्रा में। बट सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी इन टू विन 75 pounds वाउचर डेली व्हेन यू सेंड ओवर 1000 pounds एंड 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000। TNC अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Like a gold.
3: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
4: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
3: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
4: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
3: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
4: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
3: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
5: किटी पार्टी हो या बिजनेस मीटिंग या कोई खास सेलिब्रेशन, अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट खाना, 5-course लंच सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
6: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
7: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
8: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
7: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
8: Plus beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
7: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear. All in one destination.
9: इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की प्रस्तुति पुरुषोत्तम मास में आइए और दिव्य आशीर्वाद पाइए। 17 मई से 15 जून प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक श्री मद भागवत पारायण और शालिग्राम पूजा भगवान विष्णु के 1000 नामों के साथ। साथ ही हर शनिवार श्री राज राजेश्वर गुरु जी के साथ सुंदर कांड पाठ और हनुमान चालीसा हीलिंग दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक। स्थान 22 मामस्टल रोड हैरो HA37RR। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 02084260678 और विजिट Dasham official website.
10: Are we there yet?
11: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
10: Relax, I've booked the Uber already.
11: How? My roaming isn't even working yet.
10: I switched to Simzy before we left London.
11: Simzy? Since when are you the tech expert?
10: Since I decided I want a stress-free holiday.
12: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
13: T's and C's apply. हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाए जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ।
14: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स, जो है बारबेक्यू, लेमन चिली, मस्त मसाला और मैक्सिकन सालसा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल।
13: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
15: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
16: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com.
17: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
0: Our Artist of the Week is सप्ताह हैं अनुराधा पौडवाल। बहनों भाइयों, मुझे अनुराधा जी के साथ काम करने का अवसर मिला, वो अनुभव बड़ा सुखद रहा था। एक शो मैंने उनका कॉम्पीयर किया साउथहैम्पटन में, एक यहाँ साउथ बैंक में थेम्स के किनारे भाई, वहाँ पर भी उनका शो किया। और वैसे उनसे धार्मिक स्थलों पर भी मुलाकात होती रही। उनके साथ काम करना बहुत अच्छा लगा था और साथ में उनकी बेटी कविता पौडवाल के साथ भी कार्य करने का अवसर मिला। पार्लियामेंट में एक दो फंक्शंस में उनसे मुलाकात हुई। तो भाई अनुराधा जी, आप जानते हैं कि धार्मिक गीतों के साथ जो है टी सीरीज़ में जब शामिल हुई तो गुलशन कुमार के साथ बहुत सारे उनकी सीरीज़ रिलीज़ हुए और उस समय उन्हें इंटरव्यू करने का मौका मिला था। गुलशन जी भी साथ थे। उसके बाद गुलशन कुमार जी का कत्ल हो गया और कितना अब यूँ कहिए कि नेगेटिव प्रभाव पड़ा था उस कंपनी पर। लेकिन उसके बावजूद भी भाई अनुराधा जी की आवाज़ देर तक फिल्मों में, धार्मिक स्थानों पर, मंच पर जो है रंग जमाती रही। और उनकी भाई आज ये समय जो ये प्रस्तुति है कि वो आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि आर्टिस्ट ऑफ द वीक टाइटल के तहत कुछ ऐसे गीत निकाल के लाए जाएं, सुनवाए जाएं, जो बहुत देर से ना सुने हों, लगे कि भाई कुछ कुछ नयापन है। भले ही गीत पुराने हो, लेकिन देर बाद सुने जा रहे हों।

0: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
2: और लीजिए साहब, ये गीत हम उनके नाम कर देते हैं जो आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि आज जन्मदिन मनाने वालों में एक नाम शामिल है, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, परितेश देशमुख के पूज्य पिताश्री। दुनिया में नहीं है लेकिन याद किए जा रहे हैं। आज ही जन्मदिन मनाने वालों में एक नाम है सुशील कुमार का। भाई पहलवान है, रेसलर हैं, दिल्ली में जन्मे थे, नजफगढ़ से हरियाणा में ही मान लीजिए आप। और ये पहलवान जो है बहुत सारे विवादों से घिरे रहे हैं, जुड़े रहे हैं, इसलिए भी मशहूर हैं। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स तो सुशील कुमार पहलवान। सुनते हैं वो गीत जिस पर भाई मैंने बहुत एक्टिंग की, क्योंकि डांस तो करती थी एक लड़की फरीदाबाद की, और साहब उसके साथ खूब प्रैक्टिस करके हम दोनों, ये जो इसमें मेल स्वर थोड़ा सा आता, देवानंद की जो भूमिका थी वो मैं निभाता था, बाकी सारा डांस वो लड़की करती थी विमल नाम की। और साहब खूब क्विंटल क्विंटल के वो ठुमके लगाती थी, खूब हॉल में सीटियां बजती थी, और पीछे जो आर्टिस्ट होते थे ना हमारे साथी, वो भी भाई पीछे वो पर्दे में से झाँक झाँक के उसका डांस देखते थे। पर थोड़ा बहुत मेरा भी, लेकिन अपना तो समझो कि खाली मौजूदगी थी स्टेज पर। क्या डांस करती थी वो लड़की, नाम नाम क्या, कमलेश याद आ गया, विमलेश नहीं, कमलेश भाई, कमलेश नाम था उसका। और मैं बात कर रहा हूँ करीब 40-45 बरस पहले की। सुपरहिट डांस ऑन दिस सॉन्ग, होठों में ऐसी बात मैं दबा के चली आई, पर ठुमकों में फूट पड़ी वो बात।
3: होठों में

0: वैजयंती माला पर वही पिक्चराइज हुआ था ये गीत, साथ में देवानंद थे और गीत में शब्दावली तो यहाँ तक थी लेकिन उसके बाद संगीत जबरदस्त और उस पर देर तक वो चला डांस। फिल्म का नाम था ज्वेल थीफ।
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Ye hai Laika Gold.
4: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.
0: विजय को याद आ रहा है ये गीत, भाई कितना बढ़िया डांस किया था। वैजयंती माला तो थी ही भाई नृत्यांगना, प्रोफेशनल डांसर। और हंसा बोरा जी, अर्जुन जी, प्रदीप सोलंकी, अहीर यादव, थैंक यू वेरी मच आप सबका। एजाज चशम में हमें सुन रहे हैं, हर गीत पर उनकी प्रतिक्रिया सर आंखों पर। प्रकाश सूत्र, अनिल सोनी वियाना में, निर्मला जी थैंक यू, रंजन जी।

0: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
1: साउथहॉल ट्रेवल का एक संदेश है भाई, आपको याद दिला दें हम, वो कह रहे हैं कि भाई हॉलीडेज पे जाने का मौसम भी है, मौका भी है और सारी व्यवस्था भी है। मेक दिस समर मेमोरेबल विद साउथहॉल ट्रेवल, एक्सप्लोर बीच ब्रेक्स, सिटी एस्केप्स एंड मोर विद द हॉलीडे डील्स दैट इंक्लूड फ्लाइट्स, होटल्स एंड एटॉल प्रोटेक्शन, ट्रस्टेड फॉर ओवर 40 years एंड विनर्स ऑफ द ब्रिटिश ट्रेवल अवार्ड। साउथहॉल ट्रेवल विजिट कीजिए, साउथहॉल ट्रेवल और कॉल 0208574840।
0: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: It's the cinematic event of the year. Critics are saying a stunning, breathtaking triumph of savings. It's 2-for-1 cinema tickets from Compare the Market in cinemas all year.
3: That sounds like a great movie.
2: Sergey, it's no movie. It's 2-for-1 offer on cinema tickets.
3: Oh, yeah. I knew that.
2: Get 2-for-1 cinema tickets every Tuesday or Wednesday with the Compare the Market app. The simplest way to save.
4: When you take out a qualifying product to Compare the Market. One membership per year, participating cinemas, 2 standard tickets only, cheapest free. T's and C's apply.
5: ये है लाइका गोल्ड
1: ट्रेवल हब world.com। कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 Ealing Road वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208782883 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
6: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
7: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: Visit travelhubworld.com।
8: 105 सुपर हिट शोज पछी हवे लंडन मा आवी रह्यु छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी जयज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रेजो हसबंड जी, लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनी फुल गारंटी। फ्राइडे 26 जून 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मा रातना 8 वागे। टिकट्स बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk, कॉल करो वीडियो रामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655। सखना रे जो हस्बैंड जी।
9: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
10: Travel hub best, sab kare test. Disha rice ka hai zamana. Disha basmati rice.
11: Disha rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carries, Singsbury's, Kacha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira Southall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save Kenton Road. Disha rice, come down and taste the difference.
12: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
13: Location, location, location.
14: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
13: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
14: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
13: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
14: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
13: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
14: To book, call our London office on 020
7: 3963575757. Greens by Danube. Prime location.
15: High appreciation.
7: In Dubai.
16: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
0: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
17: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज. रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड. जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com. टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.
1: और लीजिए साहब, ये गीत करते हैं उनके नाम जो हमारे सबसे वैल्यूएबल लिसनर, डेडिकेटेड लिसनर. कौन है वो? आज उनका जन्मदिन है. किसका जन्मदिन है आज? बड़े बड़े फिल्मी सितारों का भाई, नेताओं का, खिलाड़ियों का. इनका जन्मदिन तो हम मनाते रहते हैं, लेकिन ये हमारी सबसे पुरानी और साहब सबसे क्या कहें, प्यारी लिसनर हैं. नाम है इनका, जिनके नाम ये गीत जा रहा है, नाम है इनका, क्या नाम है? मिसेस शेख.

0: લોક પૂછરે કેટલા વર્ષની થઈ ગઈ છે દીકરી મને ખબર નથી માઇન્ડ યોર બિઝનેસ
1: સોને દી
2: તવી કરી नूरजहां की आवाज में ये गीत हमारी बहन मिसी शेख के नाम आज उनका जन्मदिन है और बहन भाइयों आपके घर परिवार में भी किसी का जन्मदिन हैप्पी बर्थडे।
3: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय कोका नूडल्स जस्ट ऐड हॉट वाटर एंड एंजॉय कोका नूडल्स इन 3 मिनट्स।
4: मनोरंजन विद रवि शर्मा।

0: मिल के बिछड़ना और बिछड़ के फिर मिलना, क्यों ना हम एक हो जाएं। ब्यूटीफुल लिरिक्स एंड बहुत प्यारा गीत। मैंने चुना था इस गीत को फ्रॉम द फिल्म रॉकी। रॉकी 1981 की रोमांटिक एक्शन फिल्म थी, डायरेक्टेड बाय सुनील दत्त जी। एंड सुनील दत्त जी ने टीना मुनीम, रीना रॉय, अमजद खान, राखी, रंजीत और बहुत सारे एक्टर्स को लिया था किसके अगेंस्ट। वेल, रॉकी थे कौन, याद आया, संजय दत्त की ये डेब्यू फिल्म थी। बहुत प्यारी फिल्म और इस फिल्म के गाने भी काफ़ी मशहूर हुए थे। संगीत था आर डी बर्मन साहब का, आनंद बख्शी साहब ने लिखा था इस गीत को। देखें ज़रा, बिकेम पॉपुलर, वेरी पॉपुलर हिट सॉन्ग बन गया था और वैसे ये गाना भी काफ़ी पसंद किया गया था। एंड इस गीत में दो आवाज़ें आपने सुनी, किशोरदा एंड लता जी की। और इससे पहले आज के प्रोग्राम का आगाज़ मैंने किया माधुरी दीक्षित और आमिर खान पर पिक्चराइज हुए गीत के साथ, जिसमें जितेंद्र भी थे और फिल्म का नाम था दीवाना मुझसा नहीं। आनंद मिलन का था संगीत और इस गीत को लिखा था समीर ने। ऐसे ही मीठे मीठे गाने ऑल द वे टिल 4 o'clock। यस, आई एम सिटिंग इन फॉर बाली ब्रह्मर जी, जो कि छुट्टियां मना रहे और स्टेज पर कल तो कमाल धमाल कर दिया था एंड बहुत मज़ा आया। अगर आप भी वहीं रॉयल अल्बर्ट हॉल में थे तो आपने भी ज़रूर इन्जॉय किया होगा पूरा का पूरा प्रोग्राम। और हमें भी सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत से ऐसे साथी मिले जो अपने कान हमें उधार देते हैं, अपने होने का कभी कभी एहसास भी नहीं दिलाते हैं, लेकिन उन सब से बात करके बहुत खुशी हुई। अब नाम तो सरिता याद रख नहीं सकती है ना, एक भला सा नाम याद आ रहा है मुझे, मुकेश तन्ना जी। यस, मुकेश तन्ना जी कहते हैं, मैं गार्डन में कल बैठा, मींस कल ही का प्रोग्राम था, तो कहते हैं कि आज मैं सुन रहा था प्रोग्राम एंड मेरी वाइफ कह रही थी गार्डन में इतनी तेज़ रेडियो चला रखा है, इसको आहिस्ता कर दे, लोग क्या कहेंगे। तो कहते हैं, मैंने उन्हें कहा कि लोग क्या कहेंगे, वो भी सुनेंगे लाइक अ गोल पर कितने प्यारे प्यारे गीत आ रहे हैं। थैंक यू मुकेश तन्ना जी एंड मिसेस तन्ना, आपसे मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई। स्वीटी जी, प्रीति जी, आपसे भी मुलाकात हुई। एंड टीलू दीदी, आपने भी बड़े प्यार से दूर से वेव किया था एंड फिर आके मुझसे बात भी की, बहुत अच्छा लगा। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, अब किस किस को याद करूँ, किस किस को याद रखूँ। हनी ईफ, आप भी मिले थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब प्रोग्राम को आगे बढ़ा लें।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: भाई, अगर आप इनके जरिए पैसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं इंडिया में कहीं भी, तो योर 1 pound in British sterling can get you today 128 rupees and 25 paisas, maybe 30 paisas as well. Depend करता है कि कितना अमाउंट आप ट्रांसफर करा रहे हैं। और सुनिए, अगर आप पहली जून से पहले पहले आप चाहे SBI योनो ऐप के ज़रिए और ब्रांच में जाकर पैसे ट्रांसफ़र कराएंगे, तो यू विल बी इन टू विन अ 75 pound वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर 1000 pounds एंड ऑल्सो अ 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 pounds। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gold Afternoons with Bali Brambert. Proudly sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India. Bringing authentic flavors to your table every day. Find Gemin at Asian stores near you.

0: Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: 1973 में आई थी ये फिल्म और इस फिल्म के सारे गाने बड़े मशहूर हुए थे, खास तौर पर एक डायलॉग राजेश खन्ना की आवाज़ में, और मेरे दिल में आज क्या है बिना का गीत माला पर इस गाने ने तो धूम मचाई थी। और फिर दूसरा कौन सा था, अब चाहे मार उठे या बापा, वो भी गाना बड़ा मशहूर हुआ था। साहिर लुधियानवी जी ने लिखे थे सारे गाने और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था संगीत, और इसमें मेरी फेवरेट हीरोइन थी दोनों राखी एंड शर्मिला टैगोर, एंड राजेश खन्ना का तो उस वक्त बहुत क्रेज था। एंड बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था यश चोपड़ा जी को फॉर दिस फिल्म, एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस राखी को। बाकी के नाम नॉमिनेट हुए थे, बेस्ट फिल्म बेस्ट एक्टर राजेश खन्ना, बेस्ट एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर, एंड बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, एंड बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर किशोरदा को फॉर मेरे दिल में आज क्या है, पर अवार्ड नहीं मिला था। पर गाने कितने मशहूर हुए थे ये आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे वो साथी जो बराबर मुझे मैसेजेस लिखकर भेज रहे हैं, थैंक यू एवर सो मच फॉर जॉइनिंग लाइका रेडियो नेटवर्क के, लाइका गोल्ड पर सुन रहे हैं, लेस्टर में सुन रहे हैं, मिडलैंड्स में सुन रहे हैं, जहाँ भी बैठे सुन रहे हैं, आपका स्वागत, आपका खैर मकदम करती हूँ मैं। एंड मैं हूँ सरिता सबरवाल, सिटिंग इन फॉर बाली प्रम्पाट।
0: दिस इज लाइका गोल्ड। Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
1: धरती कही पुकार के, ये था फिल्म का नाम जिसका ड्यूएट आपने सुना मुकेश जी एंड लता जी की आवाज़ में। 1969 की फिल्म थी। पुराने गाने सुनकर मज़ा ही कुछ और तरह का होता है। यस, आपको पसंद आ रहे हैं ये गाने जानकर बहुत अच्छा लग रहा है। फारूक मोहम्मद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज के लिए। महेंद्र बरजारिया जी साउथ हैरो में सुन रहे हैं। संध्या भाव सर, विजय गुजरी, मुकेश तना जी, आपका मैसेज भी आ गया और एक गाने की फरमाइश भी मुझ तक पहुंचा दी है। थैंक यू राजेश जी, आप भी सुन रहे। अर्जुन, दिनेश पोपट जी, नाजिया, शकील, नीलम जी, मृदु जी, सहर तोची जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पमी सिंह जी इन स्लाव एंड उल्लास इन टोरंटो, हंसा वोरा जी, आप सभी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और आप कहाँ बैठे सुन रहे हैं, अगर अपने होने का एहसास दिलाना चाहते हैं तो देर किस बात की, जल्दी से व्हाट्सएप कर दीजिएगा।
2: दिस इज लाइक अ गोल्ड, अ पार्ट ऑफ द नंबर वन एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क इन ग्रेटर लंदन, द लाइक अ ग्रुप। Wake up to Kajalon breakfast at 6 a.m. and drive back with Sandy Shah at 4 p.m. Like a Gold.

0: London at Breakfast and Drive.
1: Gem in Gold Afternoons with Bali Brambert.
2: Bali Brambert.
1: Gem in Foods. बिल्कुल घर जैसा स्वाद और घर जैसी ही बात. Available at Asian stores near you.
3: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
4: TravelHub, best service with unbeatable price.
3: At all protected.
4: Visit TravelHubWorld.com.
5: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
6: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
5: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
6: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
5: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
7: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
8: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
7: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
8: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
7: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
8: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
7: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
9: Ram Krishna Hari. UK, feel the power of Maharashtra. This 6th June, experience Vadya Mahotsav 2026 live at Royal Windsor Racecourse, SL4 5JJ, 100 Dol, 80 Tasha, Parampara, Sanskruti aur full on Josh ka mega celebration. Bharat se UK tak, ek hi rhythm, ek hi pride. Tickets live now at svrtuk.org. Leica listeners get exclusive discount. Use code LAIKA10. Vadya Mahotsav 2026. Feel the beat, live the legacy.
10: वॉटफर्ड में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी, थोड़ा देसी.
11: देन कम टू गॉडफादर एंड कंपनी, विवेक हाउस, बार एंड किचन.
10: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला टू बिरयानी, फ्रेश ब्रेड्स एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स.
11: हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम.
10: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, मेक इट मेमोरेबल.
11: गॉडफादर एंड कंपनी, टेस्ट द लेगेसी, लिव द मोमेंट.
10: विजिट विवेक हाउस वॉटफर्ड. कॉल 0730099823.
11: बुक योर टेबल टुडे.
12: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे. कैंटन रोड, वेस्ट लंदन और इल्फर्ड, ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस. कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344. Our line.
13: Fly more, pay less with Leica Fly. Grab cheap flights to India, the Philippines, Africa and Pakistan. Book now, pay later. All at all protected. Call 0207-132-0700 or visit leicafly.com. Leica Fly. Fly more, pay less.
14: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસ માં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે.
15: બીએપીએસ મંદિર નું ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર.
14: યુરોપ ના 3-9 દિવસ ના ટૂર્સ,
15: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
14: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ.
15: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે.
14: કોલ 0208900-2323. ધ સ્ટાર ટૂર્સ.
15: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન.
16: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply. From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 0208-767-2142.
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
13: स्टार ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय स्टार टूर्स कोच यूरोस्टार या फ्लाइट आप चूज करो अपना स्टाइल बाकी सब स्टार टूर्स एक्सपीरियंस संभाल लेता है विजिट StarTours.co.uk

0: पंच पुंज राज मंत्रे पंच पंच पुंज राज मंत्रे।
1: बहुत दिनों के बाद इस गीत को हमारे प्रोग्राम में जगह मिली, जमीन आसमां। ये था फिल्म का नाम, 1972 की फिल्म। आज हमारी प्यारी सी मिसेस शेख अपना बर्थडे मना रही है। मिसेस शेख को हमारी तरफ से, हमारी सारी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। मिसेस शेख की एक खासियत है कि वो किसी भी प्रेजेंटर का कभी भी बर्थडे नहीं भूलती हैं, हमेशा अपनी बेस्ट विशेज एंड गिफ्ट्स हमेशा भेजती रहती हैं। हमारी तरफ से तोहफा, आज का सारा प्रोग्राम आप ही के नाम। मिसेस शेख, हैप्पी बर्थडे टू यू।
2: करेंसी अपडेट्स स्पॉन्सर्ड बाय लेमफाई मोबाइल ऐप। सेंड मनी टू इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश स्विफ्टली फ्रॉम योर फोन।
1: Right, a pound in your pocket can get you Indian rupees 128.94, Pakistani rupees 374.86, Sri Lankan rupees 441.76, Bangladeshi taka 165.34, Afghanis 84.69, US dollars 1.34.
3: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Listen wherever you are by downloading the LIKA Radio mobile app now. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, poojasweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Right, gold ka rate is what market mein 107 pounds and 86 pence per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, poojasweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
4: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Leica Gold in London, the Midlands and Manchester.

0: रेमो फर्नांडिस की आवाज़ में गाए हुआ ये गीत हमें ले आया है न्यूज़ के बिल्कुल करीब। हम और तुम और हम, ऐसे गाने चलते रहे प्रोग्राम के इस आवर में। गीत आपने सभी के सभी पसंद किए तो थैंक यू सो मच। बहुत से मेरे साथी मिसेस शेख को विश करना चाह रहे। मिसेस शेख, संध्या भावसर ने भी लिखा है, और ये कौन है, शादा जी, उन्होंने भी लिखा कि मुझे बहुत अच्छी लगती हैं मिसेस शेख की, उनकी चॉइस भी बड़ी अच्छी होती है, तो उन्हें हमारी तरफ से भी विश करें। तो और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं, लेकिन सभी सुनने वालों की तरफ से मिसेस शेख को भी बहुत बहुत बधाई हो। आइए न्यूज़ की तरफ बढ़ें, और न्यूज़ के उस पार मैं सरिता आप ही के साथ।
1: Across Greater London, this is Leica Gold, 10:35 AM, DAB and online, a part of the Leica Radio Network.
2: The top stories this hour. The Attorney General says there's an epidemic of violence against women and girls as the sentences of three boys who avoided prison over rape charges in Hampshire go to the Court of Appeal. The judge handed the 15-year-olds rehabilitation orders because he didn't want to criminalise children. Former Safeguarding Minister Jess Phillips says boys that age know what they're doing.
3: They made those choices and they should have to live with the consequences. We should make it so that in our youth justice system there is rehabilitation for whatever influences led to this behaviour, but fundamentally our justice system also has to deliver justice and punishment.
2: Four people, including two children, have died after a train hit a school bus in a town near Brussels this morning. The crash happened at a level crossing. Four teenagers have died after drowning during the bank holiday weekend's hot weather. Police responded to three incidents yesterday, a day after a 15-year-old boy's death in Lincoln. Peter Kennedy from the Royal Life Saving Society says trying to cool down in open water has its dangers.
4: There's a big problem with cold water shock. Immediately on contact with the cold water, it forces you to exhale. It makes your limbs less receptive, less responsive. And so you can find it very difficult to swim in that situation.
2: A stepmother's been found guilty of killing a 5-year-old girl by scalding her in a hot bathtub. Janice Nix, who's 67, has been convicted of the manslaughter of Andrea Bernard in South London in 1978. Her death was treated as an accident until her older brother Desmond gave police a new account in 2022. Iran's foreign minister says American strikes in the south of the country last night breached a ceasefire. The US military claims the action was self-defense. And the chair of BP has been removed with immediate effect. Shares in the oil giant have fallen by more than 5%. From Sky News, I'm Cam Hall.
1: This is Leica Radio Network, officially London's number one Asian commercial radio group. Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
0: Right, good afternoon. और इस आवर में एक बार फिर से मौसम का याद दिला दूं कि कितना हॉट मौसम है। सनी एंड लाइट विंड्स, मैक्सिमम 33 एंड लो विल बी 16 डिग्री सेल्सियस इन लंदन एंड इन सराउंडिंग एरियाज। लेस्टर मिडलैंड्स में लाइट रेन्स शावर्स एंड लाइट विंड्स, 31 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर एंड इट विल गो डाउन टू 13। राइट, अपने दिल के मौसम को अच्छा रखिए, बाहर का मौसम जैसा भी हो।
1: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410.
0: This is Sarita Sabharwal sitting in for Bali Brahmbhatji, and बता दूँ कि कल उत्तम सिंह जी का बर्थडे था। उत्तम सिंह जी ने बहुत से अच्छे अच्छे गीत कंपोज किए हैं, तो प्रोग्राम के इस आवर में कुछ एक गाने उनके कंपोज किए हुए मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सुनिए बैक टू बैक दो गाने बस।
5: Leica
1: Gold. Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
6: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
0: Travel Hub.
6: At all protected.
1: Leica. This is Leica.

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने, पहला गीत मैंने दिल तो पागल है फिल्म से चुना था और दूसरा गीत फिल्म गवाही से पंकज उदास एंड अनुराधा पौडवाल की आवाज़ें और पहले गीत में लता जी एंड उदित नारायण जी की आवाज़ें। वेल, उत्तम सिंह जी ने एक्चुअली कल अपना बर्थडे मनाया था। उत्तम सिंह जी वॉज बॉर्न and on 25th of May in 1948, is an Indian music director and a very well-known violinist. And he has also worked as a music arranger, programmer and recordist for many Bollywood films. He worked as a music assistant for Ilaiyaraja in numerous Tamil films. And before establishing himself as an independent composer, Uttam Singh ji ne बहुत से प्रसिद्ध जो कंपोजर्स थे उनके साथ काम किया और उनके गीतों में वायलिन वादक के तौर पर काम किया। उन्होंने कई यादगार बॉलीवुड फिल्मों में संगीत दिया है, ख़ासतौर पर 1990 से लेकर 2000 तक की फिल्में। कौन कौन सी फिल्में, ये दोनों तो आपने गीत सुन लिए, और भी बहुत से नाम हैं ज़रूर बताऊँगी, लेकिन थोड़ा सा बता दूँ कि इनके फादर वॉज अ सितार प्लेयर। हिज फैमिली मूव टू मुंबई व्हेन उत्तम सिंह वॉज 12 years old. He learned tabla and western violin, and his family used to sing kirtans in various gurdwaras and religious functions to supplement their income. And as a violinist, उन्होंने बहुत से गीतों में, इतने यादगार गीतों में वायलिन बजाया। कुछ नौशाद साहब के गीत, रोशन साहब के, मदन मोहन जी, सी रामचंद्र, सचिन देव बर्मन एंड लेटर आर डी बर्मन जी के लिए भी उन्होंने वायलिन बहुत बजाया उनके बहुत से गीतों में। बताऊंगी कौन से वो गीत हैं, थोड़ा सा इंतज़ार।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: भाई अगर इनके जरिए पैसे आज ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो 128 रुपीस 45 पैसे मिल रहे हैं for one British sterling pound. And you can send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gold Afternoons is sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India. From classic snacks to new flavors, find your favorites at your nearest Asian store.
3: Selling your car can be super simple if you choose We Buy Any Car, because they sort out any outstanding finance for you. Just bring along your final settlement agreement. If only they could make parallel parking simpler.
4: To the right a bit, mate. Yep, back a bit. Bit more. Oh, no, too far.
3: We Buy Any Car. Selling made simple. To sell your car today, enter your reg number now at webuyanycar.com.
5: किटी पार्टी हो या बिजनेस मीटिंग या कोई खास सेलिब्रेशन, अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट खाना, 5-course लंच सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823। The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
6: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
5: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
6: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
7: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
8: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
7: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
8: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
7: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
9: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
10: 105 super hit shows pachi have london ma aavi rahyu che ek dhamakedar international gujarati comedy jay's entertainment laine aavi rahya che sakhna rejo husband ji leena shah ane samir shah sathe hasya ni full guarantee fridays 26 june 27 patidar samaj wembley park ma raat na 8 vage tickets booking mate visit karo eventbrite.co.uk call karo videorama athwa call karo mr b 07860 280 6 double 5 Sakhna Rejo Husband Ji.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: बहन, गीतों की कोई एविडेंस ऐसे नहीं है, रिटर्न एविडेंस की इसमें वायलिन जो है वो उत्तम सिंह जी ने बजाया, लेकिन उन्होंने इतने सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, तो ऑब्वियसली कुछ एक गीतों में ये बताया गया है कि ये इन गीतों में जो वायलिन है वो उत्तम सिंह जी ने ही बजाई है। वैसे उन्होंने बहुत से म्यूज़िक कंपोज़र के साथ किसी को असिस्ट किया है, म्यूज़िक असिस्टेंट इन गुड्डू, करण, प्रेम शक्ति, जज्बात, अंदाज अपना अपना में म्यूज़िक असिस्टेंट रहे, हम आपके हैं कौन में म्यूज़िक अरेंजर थे, प्यार का तराना म्यूज़िक असिस्टेंट रहे, अरेंजर थे इन अनमोल के गीतों में, म्यूज़िक अरेंजर एंड कंपोज़र पंजाबी मूवी थी, मेहंदी शगना दी, ऐसे बहुत सारी म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया है, चाहे वो आर डी बर्मन साहब हो, एस डी बर्मन हो या नौशाद साहब थे, बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया। चलिए भी अब जल्दी से आपको ज़रा ये इन्फॉर्मेशन दे दें, कॉलिंग ऑल किशोर कुमार फैंस, स्पेशल म्यूज़िकल नाइट फीचरिंग केतन, इंद्रानी, संजय एंड 515 बैंड। इट टेक्स प्लेस ऑन फ्राइडे 19th जून एट द प्रिंस रेजेंट होटल चिगवेल में। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है लाइका गोल्ड रेडियो।
0: ये है लाइका गोल्ड। Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles।

0: ऐसे बहुत से गीत हैं जो कंपोज किए उत्तम जी ने, उत्तम जी का साथ दिया था इस फिल्म में जगदीश जी ने।
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today. Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits.
0: राइट, आई वॉज टेलिंग यू अबाउट उत्तम जगदीश कि उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में एक साथ म्यूजिक दिया था, इंक्लूडिंग मनोज कुमार पेंटर बाबू एंड ऑल्सो क्लार्क, एंड दे ऑल्सो वर्कड ऑन दिस फिल्म वारिस, जिसका मैंने गीत आप तक पहुंचाया। और अब ज़रा जल्दी से बता दूं कि हरे राम, यस, ये लाइका रेडियो नेटवर्क इज़ द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर ऑफ द मिथोलॉजिकल शो हमारे हरे राम, नहीं हमारे राम, एंड स्टारिंग एक्लेम्ड एक्टर आशुतोष राणा एज रावण एंड राहुल आर बुचर एज Ram, and it take place on between 9th and 12th of July at London's Aventim Apollo. Like
2: Hey, this is Sandy Shah. Drive you home every Monday to Friday between 4 and 7 p.m. with the best tunes, my games, and a bit of Yeh Yavo only on Like a Gold.
0: और हम आपको साउथ हॉल ट्रैवल वालों का भी एक मैसेज पहुंचा दें, मेक द समर मेमोरेबल विद साउथ हॉल ट्रैवल्स, एक्सप्लोर बीच ब्रेक्स, सिटी एस्केप्स एंड मोर विद द हॉलीडे डील्स दैट इंक्लूड्स फ्लाइट्स, होटल्स एंड एटॉल प्रोटेक्शन, ट्रस्टेड फॉर ओवर 40 इयर्स एंड विनर्स ऑफ ब्रिटिश ट्रैवल अवार्ड। विजिट साउथ हॉल ट्रैवल और कॉल देम ऑन 0208-574-8410।
1: Breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive. Leica Extra podcast update.
0: जी हाँ, उसके बारे में भी बता दूं जल्दी से, डोमेस्टिक वायलेंस है इस बारी का जो टाइटल है, एंड होस्ट कर रहे हैं दीप राजा, और बहुत सारी इसमें बातचीत होगी, लेकिन मेन पॉइंट है आपसे जानना चाहते हैं कि इस डोमेस्टिक वायलेंस ओनली फिजिकल अब्यूज़, या फिर किसी को हम तानेबाजी भी करते हैं तो वो भी अब्यूज़ होता है। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
1: लाइका एक्स्ट्रा
3: है
4: Leica Gold.
3: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons, from dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious, everything for everyone.
5: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
3: TravelHub, best service with unbeatable price.
5: At all protected.
3: Visit TravelHubWorld.com.
6: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
7: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
6: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
7: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
6: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
7: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
6: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube, prime location,
8: high appreciation
9: in Dubai.
4: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
10: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
4: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
10: And you didn't pay those massive roaming charges?
4: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
6: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
11: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
12: Atif Aslam live in the UK.
11: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
12: Book your tickets now at AXS.
11: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
12: Exclusive radio partner, Leica Radio.
13: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आइफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलिडेज कॉल करो 0203-773-6333 मंत्रा हॉलिडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
14: Discover Malta and Gozo with a Twin Center Island Escape. Fly from a choice of UK airports year-round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 0192 388 3100 Atoll Protected.
15: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com T's and C's apply
16: Psst. You Yeah you Listening to the radio Up to whatever. We just wanted to let you know there's a lotto draw coming up and...
17: It could be you.
16: Yeah, what he said. Lotto. From the National Lottery. Rules and procedures apply. Players must be 18 or over.
18: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Across London. This is Bally Brambat on Leica Gold.

0: वक्त बड़ी तेजी के साथ दौड़ रहा है और मुझे इसे यहीं रोकना पड़ेगा, दो आई रियली डोंट वॉन्ट टू। जगजीत जी की आवाज़, ब्यूटीफुल वॉइस में ये गीत उत्तम जी ने संगीतबद्ध किया था और इंडिपेंडेंटली इन्होंने बहुत सी फिल्मों में संगीत दिया और सभी काफ़ी कामयाब भी हुई। एक और गीत है जो मैंने लाइनअप किया हुआ है, सुनवाऊंगी आपको, लेकिन उससे पहले बहुत से और काम।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, a pound in your pocket can get you today. इंडियन रुपीस में 128.67, पाकिस्तानी रुपी 374.66, श्रीलंकन रुपी 443.56, बांग्लादेशी टका 165.24, अफगान अफगानी 84.8 एंड US डॉलर्स 1.34।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LIKA Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: राइट इस वक्त गोल्ड का रेट है 108 pounds and 17 pence पर ग्राम।
1: गोल्ड रेट वाज स्पॉन्सर्ड बाय पूजा स्वीट्स, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी वेजिटेरियन फूड सप्लायर्स, PoojaSweets.com और विजिटर्स एट ईस्टहैम, हाउंसलो और क्राउली। Leica Radio Network, broadcasting across Greater London. Brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England Cricket.
0: भाई मैच शुरू होने ही वाला है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच। गुजरात टाइटंस चोज टू फील्ड फर्स्ट, सो जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, फील्डिंग शुरू होगी, तो हम आपको बताते भी रहेंगे कि क्या चल रहा है मैच में।
1: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय रेमिटली, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस। डाउनलोड द रेमिटली ऐप टुडे। रेमिटली यूके लिमिटेड इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द एफसीए।
0: राइट, और आज के प्रोग्राम का अगला गीत हमें फाइनल आवर में पहुंचाएगा और इस आवर में उत्तम सिंह जी के कंपोज किए हुए कुछ गीत मैंने प्रोग्राम में शामिल की। वैसे गदर के भी गाने बड़े ज़बरदस्त थे और मैंने प्यार किया में भी उनका बहुत कुछ हाथ था राम लक्ष्मण जी के साथ, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्री नहीं है उसके ऊपर, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: Gold Afternoons with Bali Brambert. Bali Brambert is proudly sponsored by Jaimin Foods, your trusted name for dal bhat, pav bhaji, biryani and so much more. Available now at your nearest Asian shops. Jaimin Foods, the authentic taste of India.
4: Bole, tu ye kya kar raha hai re?
5: Are guru, aapke show ki ticket dhoond raha hu.
4: Ye to batao, koi pata chala?
5: गुरु इस 19 जून को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
6: तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
4: शीघ्र शीघ्र।
5: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208 514 5400, बुक ऑनलाइन एट इवेंट्राइट।
7: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड।

0: बैक टू बैक दो गाने सुने आपने, उम्मीद है ज़रूर पसंद भी किए होंगे। दिल आशना है 1992 की फिल्म थी जिसे हेमा मालिनी जी ने बनाया था, यस इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, मुझे याद आ रहा है। एंड इसमें दिव्या भारती एंड शाहरुख खान थे, यस या मेरे ख्याल में। एनीवे अगर आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो मुझे बता सकते हैं। और दूसरा गीत मैंने फिल्म चांदनी से चुना था एंड ये गाना भी बहुत खूबसूरत था। ये गाना चुनने की एक वजह थी कि पहले गीत में साधना सरगम और सुरेश वाडकर थे और दूसरे गीत में सुरेश वाडकर की भी आवाज़ शामिल थी, लेकिन साथ ही बदल गए, अनुपमा देशपांडे आ गई। पर सारे प्रोग्राम में मैं साथ ही नहीं बदलने दूंगी, वैसे ही मैंने कहा कि दोनों जो हैं वो दोनों गीतों में क्यों ना सुरेश वाडकर जी की आवाज़ शामिल करें। वैसे आर्टिस्ट ऑफ द वीक इस हफ्ते हमारी हैं अनुराधा पौडवाल जी, उनकी आवाज़ में गाया हुआ बहुत प्यारा सा गीत मैंने क्यू ऑलरेडी कर लिया है। ये है प्रोग्राम का लास्ट आवर, तो अगर अभी अभी आपने ज्वाइन किया है तो बड़ी गलत बात है भी। मैं तो यहाँ पर पहुँच गई थी 1 बजे आपके मनोरंजन के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी 1 बजे से मेरा साथ दीजिएगा कल भी एंड पूरा इस हफ्ता मैं आपके साथ रहूँगी एंड देन वीकेंड पे भी मेरा प्रोग्राम होगा। सो वो भी सुनिएगा, वो होगा 4 till 7 इन द ऑन वीकेंड्स। पर वीकडेज में बाली जी के लिए आई एम कवरिंग हिम, तो मुझे उम्मीद है कि मेरा साथ भी आपको पसंद आ रहा है। ढेर सारे मैसेजेस हैं, मैंने आप सभी को व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज वापस भेजे हैं, थैंक यू एवर सो मच। इसी तरह से बड़े प्यार से मेरा साथ देते रहिएगा। बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत कुछ कहने को होता है, इसलिए कभी कभी हम नाम नहीं ले पाते हैं, पर ये मत समझिएगा कि हम अवॉइड करते हैं, ऐसा कभी नहीं होता, कोई भी प्रेजेंटर ऐसे नहीं करता है। सो अब ज़रा ये काम हो जाए जल्दी से, फिर अगले गीत की तरफ बढ़ेंगे।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: राइट, अगर आप इनके ज़रिए पैसे आज ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो योर 1 pound इन ब्रिटिश स्टर्लिंग कैन गेट यू अप टू 128 rupees and 45 paisas एंड सेंड मनी टू इंडिया वाई SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी इन टू विन अ 75 pounds वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर 1000 pounds, ऑल्सो अ 1 gram गोल्ड क्वाइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 pounds। टर्म्स एंड conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: There's never a good place to break down.
3: Oh, not now.
2: Especially not in sideways rain, with a car full of kids on the way to the game and you're blocking the player's car park.
4: You can't park there.
2: But it's okay when you're with the AA. With more expert patrols in more places, we'll get you back on the road in no time. Join the UK's best breakdown service from £5.49 a month. Visit theaa.com. New customers only. 10% of customers pay £5.49 a month. T's and C's apply. Verify best and patrol numbers at theaa.com/best.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
5: Gold Afternoons. Proudly sponsored by Gemin Foods. The authentic taste of India. Dal bhat, pav bhaji, biryani. Bas pet sambhar jo, kyunki cravings badhne wali hai.
6: Selling your car can be super simple if you choose We Buy Any Car instead of selling privately. We Buy Any Car can get it sorted in under an hour. So no weekends watching randoms inspect your car to not even buy it. If only they could make finding where you park simpler.
7: Was it floor 2 or 3? I swear I parked here. Where is it?
6: We Buy Any Car. Selling made simple. To get a quote in 30 seconds, enter your reg number now at webuyanycar.com.
8: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
9: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
8: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
9: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
8: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
9: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
8: Offer valid from the 4th of May to the 30th of of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
3: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Like Our Radio.
4: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
10: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
4: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
10: Plus, beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
4: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
11: Discover Portugal with a Lisbon and Madeira Twin Centre Escape. Fly from the UK, enjoy 3-night stays with breakfasts, connecting flight and more. Prices start from just £599 per person. For great deals on cruise and holidays, visit www.skylordcruise and holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
12: Location, location, location.
13: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
12: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
13: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
12: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
13: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
12: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
13: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location,
12: high appreciation
13: in Dubai.
12: Watford mein dinner plans. Thoda classy, thoda desi.
13: Then come to Godfather and Company, Vivek House, Bar and Kitchen.
12: From crispy starters, butter chicken, paneer tikka masala to biryani, fresh breads and refreshing drinks.
13: Har bite mein lajawab flavors aur vibe bilkul premium.
12: Friends, family ya special night out, make it memorable.
13: Godfather and Company, taste the legacy, live the moment.
12: Visit Vivek House, Watford. Call 073-00-99-8823.
13: Book your table today.
14: Mom, have you bought some of those delicious noodles?
15: You mean Koka, the king of noodles? Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK. इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
16: आ सितंबर पेरिस में इतिहास लखाई रहे छे.
17: बीएपीएस मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जाई रह्यो छे आ पवित्र यात्रा पर.
16: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स
17: फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली अने जर्मनी साथे
16: दर्शन पण अने यूरोप पण.
17: सीट्स जल्दी भराई रही छे, आज ज बुक करो स्टार टूर साथे.
16: कॉल 02089002323. द स्टार टूर्स,
17: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन.
18: योर कॉल इज इंपॉर्टेंट टू अस. यू आर करंटली नंबर 25 इन द क्यू.
19: 25? Seriously?
18: Sounds like Ojo time.
19: Nice idea. Feel the fun with Play Ojo, the online casino with all the latest live casino and slot games. New players get 50 free spins on Big Bass Bonanza, plus instant payouts on winnings.
18: Sorry about the wait. How can I help?
19: You can help me celebrate. I won.
20: Feel the fun. Play Ojo.
21: First deposit only. Most wins are instant. 18 plus. Gamble aware. T's and C's apply.
3: Like a goal. लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर. एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो लाइकागोल्ड.com पे.
22: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation. Feel good track. brought to you by Dairy Valley.
0: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Ji haan, Anuradha ji ke saath male voice, pata nahi aapne unhe pehchana ya nahi, lekin main bata deti hoon, is geet mein male voice thi Indrajeet ki. Film Beta se chuna tha maine is geet ko, 1992 mein aayi thi ye film, aur ye gaana फिल्म में नहीं था. अगर आपने देखी है फिल्म तो याद कीजिए कि देखा था आपने या नहीं देखा था. एनीवे, अब हम आगे बढ़ते हैं और स्टूडियो में कोई और भी आई है, उनसे भी बात करा दूं जल्दी से. क्या कर रही हैं अभी आप यहाँ पर?
3: सर, ते आई कम टू सी यू
2: एक्चुअली. रियली? अच्छा, नाइस.
3: एंड यू आर इन, सो आई थॉट इससे ज्यादा अच्छा मौका क्या होगा.
2: क्या बात है, क्या
3: सखी से मिल गया.
2: सखी है, बिल्कुल सखी. मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक है अनीसा जी? इतनी लंबी छुट्टियां कैसे ले लेती हैं?
3: हाय, चुप करो, अभी तो शुरू हुई है.
2: नहीं नहीं, अभी शुरू नहीं है, अब वापिस आने का टाइम है.
3: सरिता, वो आवाज नहीं आ रही आपकी.
2: काश लंबी चौड़ी बात कर पाती अनीसा. बट यस, माइक नीचे. जरूर बातें हम करते रहेंगे, हमारी बातचीत चलती रहेगी, लेकिन अब जरा जल्दी से आप ये सुन लें.
0: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.

0: रामानंद सागर साहब ने बनाई थी ये फिल्म, एंड इस फिल्म में थी धर्मेंद्र एंड हेमा मालिनी। और ये गीत मैंने इसलिए शामिल किया है, ये फिल्म रिलीज़ हुई थी ऑन 24th ऑफ मे और उस दिन मैं ये गाना प्ले नहीं कर पाई। और आई वॉन्टेड टू टेल यू कि कितने साल पुरानी ये फिल्म है, आज भी इसके गीत कितने पसंद किए जाते हैं।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
2: Gold Afternoons with Bali Brahmbhatt. Bali Brahmbhatt is sponsored by Gemin Foods. Tamara Tea Time no asli hero. Dal bhat, pav bhaji, biryani, namkeen, khakra, chikki, potato chip, mango pal, pani puri, so many varieties for everyone. Marshe tamara najikna Asian shops ma.
3: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल TravelHub 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
0: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
0: विजिट TravelHubWorld.com।
4: Selling your car can be super simple if you choose We Buy Any Car. Now in their 20th year, they're on average 11 minutes away, so help is never far. If only they could make finding a good driving song simpler. No. No. Oh, definitely not. We Buy Any Car. Selling made simple. To sell your car today, enter your reg number now at WeBuyAnyCar.com.
5: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
6: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
7: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
6: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
7: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
6: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
7: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
6: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
8: Every morning a shopkeeper opens his doors.
9: Lights on, shutters up, staff ready.
8: But today's customers don't start on the high street.
9: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
8: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
9: They walk into your competitors.
8: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
9: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
10: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
11: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
10: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
11: गारंटेड
10: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
11: फोन 0208574-8410।
10: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574-8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
12: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
13: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जेमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स।
12: मसालेदार मसाला, टैंगी टोमेटो, सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जेमिन्स पोटैटो चिप्स।
13: जेमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग।
14: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
15: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
14: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
15: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
14: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
15: ईमेल नाउ
16: info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
17: Be part of a historic grand opening.
18: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
17: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
18: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
17: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
19: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
20: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
21: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next

0: हमारा शहर एक तरफ और प्यार जो होता है अपना एक तरफ। राजकुमार कोहली साहब ने बनाई थी ये फिल्म, उन्होंने डायरेक्ट की थी, रिटन बाय इंद्रराज आनंद और म्यूजिक बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत को भी शामिल करने की एक वजह है कि ये फिल्म 25 मई को यानी 25 मई को रिलीज हुई थी 1979। आई वॉन्टेड टू प्ले इट इन माई शो येस्टरडे लेकिन मैं नहीं कर पाई थी। उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, एक पाउंड के बदले आज आपको क्या मिल सकता है? पाकिस्तानी रुपीस 373.73, इंडियन रुपीस 128.78, श्रीलंकन रुपीस 443.14, बांग्लादेशी टक्का 165.23, अफगानिस 84.67 एंड मॉरिशियन रुपीस 63.70। का मतलब कमला जी सुन रही है ना, आपने कहा मॉरिशस के पैसे क्यों नहीं बताते हैं, बता दिए।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKA Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold ka rate hai 108 pounds and 7 pence per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley. This is Leica Gold, a part of the number one Asian commercial radio network in Greater London. The Leica Group. India cricket score updates, brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: इस वक्त मैच चल रहा है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच। गुजरात टाइटंस चॉस टू फील्ड फर्स्ट एंड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बना लिए 93 रन्स इन 8.2 ओवर्स एंड उनके दो खिलाड़ी आउट हो चुके हैं।
1: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय रेमिटली, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस। डाउनलोड द रेमिटली ऐप टुडे। रेमिटली यूके लिमिटेड इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द एफसीए।
2: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
1: Leica Gold, traffic and travel.
3: This is Martin with your travel. Queuing on the A406 North Circular Road this afternoon southbound at the Hangar Lane Gyratory. The speed sensor is giving a travel time there around about 10 minutes. A40 Western Avenue steady westbound just before you get to Gypsy Corner. Heavy on Uxbridge Road between the Parkway and Southall Park. The A312 Church Road and Mandeville Road slowing from the White Hart roundabout to the Target roundabout and on to Northolt Station. The speed sensor is giving a travel time there in about 20 minutes. To the Tube and no service on the District Line between Turnham Green and Ealing Broadway. That's due to problems with the signals at Barons Court. And severe delays on the Elizabeth line between Whitechapel and Shenfield. That's due to an earlier signalling problem.

0: भाई 3 घंटे तक मेरा साथ दिया, जिसके लिए मैं तहे दिल से आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। इसी तरह से कल भी आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगी। और अब मेरे जाने का वक्त है, सैंडी शाह विल बी हेयर ऑन द हॉट सीट एंड आपको ड्राइव करके ले जाएंगे घर तक, जहाँ भी जा रहे हैं आप, कहीं भी हैं सफ़र में हैं तो आपका साथ देंगे। और दूसरी तरफ होंगे लाइका रेडियो पर हमारे राजबदन, तो उनका साथ दीजिएगा। माइक्रोफोन के इस तरफ से सरिता अब आपसे इजाज़त चाहती है। जिन मेरे साथियों ने बड़े प्यार से मुझे मैसेजेस भेजे, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने बड़े प्यार से मुझे मैसेजेस लिखे हैं। मैं अगर आपका जवाब नहीं दे पाई हूँ तो माफ़ी, कल कोशिश रहेगी कि सभी के नाम मैं प्रोग्राम में शामिल करूं। आज के दिन ही अपना देश फिल्म भी रिलीज़ हुई थी, लेकिन उसके गाना बहुत लंबा था इसलिए आज नहीं शामिल किया, तो कल आने वाले कल में वो गाना भी कोशिश करूंगी कि मैं आप तक पहुंचा दूं। चलिए भी अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। माइक्रोफोन के इस तरफ से इजाज़त, कल फिर मिलते हैं 1 बजे की खबरों के बाद। मेरे बाद सैंडी शाह आएंगे और फिर आएगी अश्विनी और सुबह काजल लेके आती है आपके लिए ब्रेकफास्ट शो। बाय फॉर नाउ।
1: गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
2: There's never a good place to break down.
3: Oh, not now.
2: Especially not in sideways rain, with a car full of kids on the way to the game, and you're blocking the player's car park.
4: You can't park there.
2: But it's okay, when you're with the AA. With more expert patrols in more places, we'll get you back on the road in no time. Join the UK's best breakdown service from £5.49 a month. Visit theaa.com. New customers only. 10% of customers pay £5.49 a month. T's and C's apply. Verify best and patrol numbers at theaa.com/best.
5: ये है लाइका गोल्ड।
6: Bali Brumbat on Gold Afternoons.
7: लाइका गोल्ड।
8: You're listening to Bali Brumbat in Gold Afternoons.
9: Gold Afternoons.
8: Proudly sponsored by Gemin Foods. Quality, taste and tradition in every pack. Find your favorites at Asian shops near you.

0: Satco Microwave Food Containers.
1: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
2: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
3: Visit mantraholidays.co.uk or call 02037736333 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
4: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना, दिशा बासमती राइस।
5: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड, अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड। दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस।
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
6: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens

0: traffic and travel.
1: This is Martin with your travel. The M4 still busy onto the elevated section eastbound as you head from Junction 3 Hayes to Junction 2 Brentford. Greenford Avenue closed in both directions between Borders Road and Beachmount Avenue. It's due to an accident there. Traffic slowing in the area. Slow on the A312, the partway southbound before the M4 Junction 3. Church Road and Mandeville Road busy from the White Hart roundabout to the Target roundabout and on to Northolt Station. Queuing on the A406 North Circular Road in both directions at the Hangerleigh Gyratory and the A40 Western Avenue steady westbound before you get to Gypsy Corner. To the Tube, and no service on the District Line between Turnham Green and Ealing Broadway. That's due to problems with the signals at Ealing Common.
2: Yeh hai Like a Gold, 10:35 AM.
3: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
2: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
3: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
2: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
4: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
5: No more worries for me or you.
6: Southall Travel, Auto Protected.
7: 105 super hit shows pachi have London ma avi rahyu che ek dhamakedar international Gujarati comedy Jai's Entertainment line avi rahya che Sakhna Rejo Husband ji Leena Shah ane Samir Shah sathe hasya ni full guarantee Fridays 26 June 27 Patidar Samaj Wembley Park ma ratna 8 vage tickets booking mate visit karo eventbrite.co.uk call karo Videorama athwa call karo Mr. B 07860 280655. सखना रे जो हस्बैंड जी
8: किटी पार्टी हो या बिजनेस मीटिंग या कोई खास सेलिब्रेशन अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को स्वादिष्ट खाना 5-course lunch सिर्फ £35 जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड तो देर किस बात की बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823
9: इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की प्रस्तुति पुरुषोत्तम मास में आइए और दिव्य आशीर्वाद पाइए 17 मई से 15 जून प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक श्री मद भागवत पारायण और शालिग्राम पूजा भगवान विष्णु के हजार नामों के साथ साथ ही हर शनिवार श्री राज राजेश्वर गुरु जी के साथ सुंदर कांड पाठ और हनुमान चालीसा हीलिंग दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक स्थान 22 मामास्टर रोड हैरो HA37RR ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 02084260678 और विजिट सिद्धाश्रम ऑफिशियल वेबसाइट
10: चावल हो बेस्ट सब करे टेस्ट दिशा राइस का है जमाना दिशा बासमती राइस
11: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी सिंग्सबरीज कच्चा बाजार समीर बाजार मोर फूड्स सीरा साउथ हॉल डेगनम सुपरमार्केट ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाऊ एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड दिशा राइस कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस
12: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy! Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
13: This is Sandy Shah on Gold Drive.

0: opened in both directions between Borders Road and Beechmount Avenue. It had been closed there following an earlier accident. Church Road and Mandeville Road busy from the White Hart roundabout to the Target roundabout and on to Northolt Station. Queuing on the A406 North Circular Road in both directions at the Hanger Lane gyratory. A40 Western Avenue heavy westbound before Gypsy Corner to the Tube, and severe delays on the Northern Line this evening due to points failure at East Finchley. That's your latest traffic and travel.
1: Airport, please, mate.
2: Is that an inflatable pineapple?
1: Yep. I'm finally feeling holiday ready after getting me post office travel insurance sorted. It even included medical assistance plus with 24/7 doctor access when you're abroad. Pretty sweet, eh? Now, did I pack my snorkel?
3: Get holiday ready without the faff. Search post office travel insurance. T's and C's apply. Medical assistance plus is only valid for trips taken outside of the UK.
4: Yeah.
5: Like a gold.
6: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
7: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
6: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
7: गारंटेड
6: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
7: फोन 02085748410।
6: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
8: किटी पार्टी हो या बिजनेस मीटिंग या कोई खास सेलिब्रेशन, अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट खाना, 5-course लंच सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।

0: What a fantastic start of the show. पहला गीत आप सबको सुनाया था एसपी बाला सुब्रमण्यम आशा भोसले की आवाज़ में 100 डेज फिल्म से सुन बेलिया। सेकंड बहुत ही फैंटास्टिक ट्रैक लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज़ में अगर तुम ना होते। दिस फिल्म वॉज रिलीज इन 1983। अगर तुम ना होते, चलिए ये गीत मैं आप सबको डेडिकेट करती हूँ क्योंकि अगर आप ना होते तो हम यहाँ पे कैसे होते। अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुका है। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। मंडे से फ्राइडे तक शाम 7 से 10 बजे तक रहता है आपका और मेरा साथ। 3 फीचर्स आप सबको अब ध्यान में आ गए हैं और पूछे आप सबसे कितने बेक हुए आप। हाँ जो टेम्परेचर हमारे यहाँ चल रहे हैं, है ना, विटामिन डी चाहिए, सूर्य देवता चाहिए, जी कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में मिल गए। लेकिन जैसे मैंने कहा, कल से टेम्परेचर्स जो है वो फिर से थोड़े कम होने वाले हैं, मतलब हमें ठंडक महसूस होने वाली है। तो कंग्रेचुलेशंस। और कल बैंक हॉलीडे था, कल हमने बहुत मस्ती की हमारे शो पे। टुडे वी आर बैक विद टेरिफिक ट्यूसडे। तो टेरिफिक ट्यूसडे में आज अश्विनी क्या सुनाएगी, बिल्कुल आप सबको बताएंगे। लेकिन हमेशा की तरह आते से एक तो पहले मेरे जो प्यारे प्यारे साइलेंट लिसनर्स हैं, हाँ जी भाई साहब आप, हाँ जी मैडम आप, बस फ़ोन उठाइए, मुझे बताइए कि आप मुझे सुन रहे हैं। इतनी फैंटास्टिक प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, आप सबको मज़ा आने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ नॉट अ रिक्वेस्टिव शो, सो मैं कोई रिक्वेस्ट नहीं ले पाऊँगी, कोई डेडिकेशंस नहीं ले पाऊँगी। हाँ जी किसी का बर्थडे एनिवर्सरी है, कुछ विश करना है, उतना हम ज़रूर बोल सकते हैं। लेकिन मैं तहे दिल से पहले ही माफ़ी चाहती हूँ कि मैं कोई रिक्वेस्ट नहीं प्ले कर पाऊँगी। अच्छा असाइनमेंट आ गई ना, दीदी आ गई यहाँ पे, हॉट सीट पे बैठ गई, माइक पे आ गई। तो इस दीदी का नाम है अश्विनी और आज की असाइनमेंट क्या है? इंटरेस्टिंग है, समथिंग इंटरेस्टिंग, समथिंग शायद रैंडम भी हो सकता है। हम जब भी किसी से मिलते हैं तो कोई ना कोई आइस ब्रेकर क्वेश्चन पूछते हैं। सो मैं जब किसी से मिलती हूँ तो मैं उनसे जब मुझे मिलवाया जाता है किसी पर्सनालिटी से या जब मैं किसी से मिलती हूँ तो मैं उनको पहला मेरा सवाल होता है कि What interesting is happening in your life? है ना, How was your weekend? How are you? ये सवाल नहीं होते हैं मेरे। जब किसी ने सामने वाले ने नाम बता दिया अपना, उसके बाद में मेरा जो मेरा क्वेश्चन होता है, दैट इज़ व्हाट्स इंटरेस्टिंग हैपनिंग इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में क्या इंटरेस्टिंग हो रहा है, ये मेरा आइस ब्रेकिंग क्वेश्चन होता है। आपका आइस ब्रेकिंग क्वेश्चन क्या होता है ज़रा लिख के भेजिए, है ना। आज हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ को तो हमारे पास में कितने सारे आइस ब्रेकिंग क्वेश्चन के ऑप्शन हो जाएंगे। वंडरफुल प्लेलिस्ट आप सबके लिए लगी है, अटेंडेंस लगवाइए, प्यारे प्यारे मन भावन गीत यहाँ पे सुनिए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: For one British pound, you'll get up to 128 Indian rupees 15 paise. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win 75 pounds voucher every day when you send over 1,000 pounds. Also, 1 gram gold coin every week when sending over 2,000 pounds. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show. Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
2: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
1: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
2: Plus beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
1: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear. All in one destination.
3: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, like our रेडियो।
4: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, देशा राइस का है जमाना।
5: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी सिंग्सबरीज कच्चा बाजार समीर बाजार मोर फूड्स सीरा साउथ हॉल डेगनम सुपरमार्केट ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड दिशा राइस कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस
6: रामकृष्ण हरि UK, feel the power of Maharashtra. This 6th June, experience Vadya Mahotsav 2026, live at Royal Windsor Racecourse, SL4-5JJ, 100 Dol, 80 Tasha, Parampara, Sanskruti aur full-on Josh ka mega celebration. Bharat se UK tak, ek hi rhythm, ek hi pride. Tickets live now at svrtuk.org. Leica listeners get exclusive discount. Use code LAIKA10. Vadya Mahotsav 2026, feel the beat, live the legacy.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
8: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
7: High appreciation.
8: In Dubai.
9: Herald. New world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries, and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
10: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change, and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
11: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
12: From breathtaking wedding jewellery to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewellers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewellers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
3: Leica Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par, DAB digital radio par, Alexa pe bolo play Leica Gold aur online suno leicagold.com pe. Feel good track brought to you by Dairy Valley.
13: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: मिनाली देंगरिया देखते हैं टाइम कितना हुआ है. इट्स 27 मिनट्स पास्ट 7. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी. बिल्कुल सब लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत बहुत गर्मी है, सो प्लीज़ अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए. जिस फॉर्म में भी आप लिक्विड्स ले रहे हैं ठंडे, चाहे बटर मिल्क हो, चाहे कैरी का पन्ना बना के लेते हो, या कोकम शरबत लेते हो, या दूध वाली ठंडाई जो होती है वो ले रहे हो, पानी पीते रहिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए. कोल्ड कॉफ़ी ले रहे हो, बिल्कुल गर्म चाय वाले लोग भी होते हैं, अपने आप को हाइड्रेटेड ज़रूर रखें. बिकॉज़ ये मौसम जो है ना, ये कई लोगों को इससे हेडेक्स हो रहे हैं. एक्चुअली मेरे साथ में भी ऐसे हुआ था कि आई व्हेनेवर द वेदर गोज एक्सट्रीम हॉट आई स्टार्ट गेटिंग हेडेक्स and then it becomes really difficult to concentrate on things. Weather जब fluctuate होता है ना, अभी कल देखो, कल अभी फिर से हम जब 23 और 24 में we are going to plunge in that weather again, आराम से we are going to be relaxed. कितने खुश होते हैं ना, weather का कितना effect है हम सबके ऊपर. अभी most of the backyards, जब अपने अपने घरों में आप first floor या second floor पे खड़े होते हैं, जितने भी backyard है वहाँ पे चादरें, blanket, बहुत सारे कपड़े बाहर सूख रहे हैं, उन कपड़ों को भी कितनी खुशी मिलती हुई ना, हाँ फाइनली हमें भी विटामिन डी मिल रहा है. ओके चलते हैं एक मस्ती भरे गाने की तरफ. मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में सुना रही हूँ आपको जब जब फूल के लिए इस फिल्म से गीत.
0: दिस इज लाइक अ गोल्ड द इवनिंग शो विद अश्विनी.

0: अच्छा ऐसे बहुत से लोगों की जिंदगी में हुआ होगा कि नाना करते करते उसी इंसान से प्यार कर बैठे जिसके बारे में कभी तो कहा होगा कि शादी और तुमसे कभी नहीं। 5% की एड याद आ गई ना, अर्चना जोग लेकर। यस, कितनी देख रहे थे वो एड्स। एनीवे, यादों की बारात, ये जो हमारे फर्स्ट आवर का फीचर है, इसकी तरफ आप और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते आ गए, पहुंच गए गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाज़ में। CID फिल्म से सुना रही हूँ 50s का ये गीत, आँखों ही आँखों में आहा। प्रेजेंटर्स प्रेजेंट करते हुए अच्छे लगते हैं। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी।
1: नमस्कार, रवि शर्मा रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ। मंडे टू फ्राइडे जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच। मंडे टू फ्राइडे मनोरंजन विद रवि शर्मा।

0: Updates for London at Breakfast and Drive.
1: Darling, hold my hand. Oh, won't you hold my hand?
2: Nothing beats a Jet 2 holiday. And right now, we've got some great deals for you to make the most of. So you can secure your dream holiday and get the best choice of rooms and hotels. Book now with just a £60 deposit per person. Nothing beats a Jet 2 holiday. Package holidays you can trust. Natural protected, subject to availability and conditions.
0: This is Ash Winnie, in for Anissa Nazir, on The Evening Show. Like
3: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
4: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
4: विजिट TravelHubWorld.com.
5: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
6: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
5: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
6: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
5: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
6: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
5: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCNPRA.
7: Watford mit dinner plans. Thoda classy, thoda desi.
8: Then come to Godfather and Company, Vivek House, Bar and Kitchen.
7: From crispy starters, butter chicken, paneer tikka masala to biryani, fresh breads and refreshing drinks.
8: Har bite mein lajawab flavors aur vibe bilkul premium.
7: Friends, family ya special night out. Make it memorable.
8: Godfather and Company. Taste the legacy. Live the moment.
7: Visit Vivek House, Watford. Call 073-00-99-8823.
8: Book your table today.
9: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
10: Atif Aslam live in the UK.
9: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
10: Book your tickets now at AXS.
9: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
10: Exclusive radio partner, Leica Radio.
3: इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की प्रस्तुति पुरुषोत्तम मैच में आइए और दिव्य आशीर्वाद पाइए. 17 मई से 15 जून प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक श्री मद भागवत पारायण और शालिग्राम पूजा भगवान विष्णु के हजार नामों के साथ. साथ ही हर शनिवार श्री राज राजेश्वर गुरु जी के साथ सुंदरकांड पाठ और हनुमान चालीसा हीलिंग दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक. स्थान 22 मामस्टल रोड एरो HA37RR. ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 0208426 0678 और विजिट आश्रम ऑफिशियल वेबसाइट.
11: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
12: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स.
11: मसालेदार मसाला, टैंगी टोमेटो, सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जयमिन पोटैटो चिप्स.
12: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग.
13: आ सितंबर पेरिस मा इतिहास लखाई रह्यो छे.
11: बीएपीएस मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जई रह्यो छे आ पवित्र यात्रा पर.
13: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स,
11: फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली अने जर्मनी साथे.
13: दर्शन पण अने यूरोप पण.
11: सीट्स जल्दी भराई रही छे, आज ज बुक करो स्टार टूर साथे.
13: कॉल 0208900-2323 द स्टार टूर्स.
11: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन.
14: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
15: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. 28 साल का भरोसा, हर साल हजारों happy travelers, इसलिए families के लिए Star Tours experience अलग होता है. Visit startours.co.uk.

0: कर रहे थे। सो आज कुछ थका थका सा दिन जा रहा है, कोई ना, हम है ना। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। फर्स्ट आवर का जो फीचर है यादों की बारात आप सबको सुनाया, सेकेंड आवर की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आखिरी ट्रैक मैं आपको सुनाने वाली हूँ सुमन कल्याणपुर एंड मुकेश जी की आवाज़ में, मेरी सूरत तेरी आंखें। 1963 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, बड़ा ही प्यारा गीत है, सुनिए तो सही है ना। ट्यूसडे का जो माहौल है, आप और हम साथ में यहाँ पे बैठ के इस शो को अटेंड कर रहे हैं, आप लोग अपने काम धाम भी किए जा रहे हैं। अच्छा, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ, फ़नी सा किस्सा हुआ। सो हुआ ये कि यार और दोस्त, हम लोग हमेशा कहते हैं ना यारी में नो थैंक यू नो सॉरी, तो ये मज़ेदार किस्सा हुआ है इंडिया में कहीं, वहाँ पे एक चोर एक दुकान जो खुली थी ऑलरेडी, उस दुकान में घुस गया, उसके चेहरे पे मास्क था एंड उसने बंदूक निकाल के सीधे पॉइंट आउट किया उस लड़के को जो काउंटर पे बैठा था, बोला ला ला मेरे पास सारे पैसे दें। और नीचे से फिर एक आदमी निकला जो ऑलरेडी शायद काउंटर के नीचे कुछ फिक्स कर रहा होगा, कुछ उठा रहा होगा चीज़ें जो भी है। तो ये आदमी जब ऊपर सामने आया तो इसने चोर की सूरत देखी, चोर ने इसकी सूरत देखी, मतलब समहाउ जस्ट फेस मास्क नहीं था पूरा, इट वॉज जस्ट कवरिंग द नोज एंड द माउथ, समहाउ दे बोथ रिकग्नाइज टीचर द, अरे तू तो मेरा यार है, अरे तू तो मेरा फ्रेंड है, ऐसे करके एंड चोरी कैंसिल, और दोनों ने हैंडशेक किया एंड एक्चुअली ये CCTV पे रिकॉर्ड हुई है क्लिप। आप सोचिए कितना फनी, मतलब जिस हिसाब से बेचारा गया होगा चोरी करने, चोरी वोरी तो नहीं हुई लेकिन चाय पानी नाश्ता तो ज़रूर उसके दोस्त ने करा के भेजा होगा कि नहीं यार चल आज तेरी बोनी तो नहीं हुई लेकिन तुझे खिला पिला के मैं यहाँ से ज़रूर भेजता हूँ। और भी फनी किस्से, गुड न्यूज़ अराउंड द वर्ल्ड आपको मैं रोज़ सुनाती हूँ, तो बड़ी प्यारी प्यारी न्यूज़ होती हैं उसमें, चलेंगे आगे और सुनेंगे प्यारी न्यूज़।
1: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
2: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
1: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
2: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
1: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
2: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
1: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCNPRA.
3: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
4: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
3: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
4: गारंटेड
3: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
4: फोन 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: किटी पार्टी हो या बिजनेस मीटिंग या कोई खास सेलिब्रेशन, अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: Two businesses.
9: Same town.
8: Same service.
9: One appears on page one of Google.
8: The other doesn't.
9: Guess which one gets the customer?
8: The truth is brutal.
9: The first page of Google gets the business.
8: Everyone else gets what's left.
9: So here's the real question.
8: When your customers search for what you sell, do they find you?
9: Visit HeartyHanks.com and stop letting Google choose your competitors.
8: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
10: Oh, not be there yet.
11: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
12: Relax, I've booked the Uber already.
11: How? My roaming isn't even working yet.
12: I switched to Simsy before we left London.
11: Simsy? Since when are you the tech expert?
12: Since I decided I want a stress-free holiday.
13: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
12: T's and C's

0: दो बड़े ही प्यारे गीतों के साथ में सेकेंड आवर का आगाज हमने किया। जब प्यार किसी से होता है, दिस वॉज रिलीज इन 1998। उस फिल्म से कुमार सानू एंड लता मंगेशकर की आवाज में मदहोश दिल की धड़कन, व्हाट अ ब्यूटीफुल रोमांटिक ट्रैक दैट वाज। एंड सेकंड वाज थोड़ा मस्ती भरा चुक चुक, दैट वाज आशा भोसले एंड उषा मंगेशकर की आवाज में रफू चक्कर। 1975 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। द गॉर्जियस, द क्यूट ऋषि कपूर, एक्चुअली गॉर्जियस क्यूट ऋषि कपूर एंड गोफी गुम्फी पेंटल, राइट? इफ एम नॉट रॉन्ग बताइए मुझे। तो क्यूट गॉर्जियस इसलिए क्योंकि ये दोनों भी लड़कियों के आउटफिट्स पहनते हैं, और ये गाना देखने में भी बहुत मज़ेदार है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइएगा यूट्यूब पे और ज़रूर देखिएगा। तो हमारे लेट अटेंडीज अभी भी आ रहे हैं, हाय हेलो किए जा रहे हैं, आइए बिल्कुल गपशप करेंगे। और आज क्या मनाया जाता है, अगर किसी का बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे, किसी की एनिवर्सरी है तो हैप्पी एनिवर्सरी, आज आपको कोई नया जॉब मिला है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अगर कुछ हाथ से गया है तो कुछ बहुत बड़ा आपके पास में आने वाली है चीज़ें, चाहे जॉब हो, रिलेशनशिप हो, यूनिवर्स आपके लिए कुछ अच्छा और लेके आ रहा है, ठीक है? जो आपके लिए सही होगा, नॉट अच्छा, जो आपके लिए सही है वो आपके लिए यूनिवर्स लेके आ रहा है, ओके? एंड आज के दिन हम क्या क्या सेलिब्रेट करते हैं उसके बारे में बताऊंगी। तो आज मनाया जाता है नेशनल ब्लूबेरी डे, चीज़ केक डे, वर्ल्ड लिंडी हॉप डे, वर्ल्ड रेड हेड डे, वर्ल्ड ड्रैकुला डे, सैली राइट डे, नेशनल चिल्ड्रंस गार्डनिंग वीक, गार्डन वाइल्ड लाइफ वीक, नेशनल सॉरी डे एंड नेशनल पेपर एयरप्लेन डे। नेशनल पेपर एयरप्लेन डे, अभी हम में से हर एक इंसान ने वो पेपर को लेके जो प्लेन बनाए होंगे स्कूल में, क्लास में, घर पे, कॉलोनी में, जहाँ कहीं पे भी होंगे, वो पेपर के प्लेन बना के आपने, हमने सभी ने उड़ाए हैं। हमारे यहाँ तो आई कम फ्रॉम अ कॉलोनी जहाँ पे 40 फैमिलीज रहती थी, तो 40 फैमिलियों में सोचिए हर घर के तीन तीन चार चार बच्चे हुआ करते थे। हम सभी कॉम्पिटिशन करते थे, पेपर प्लेन बनाते थे, जिसका प्लेन ज़्यादा दूर तक उड़ के जाएगा दैट पर्सन विल बी द विनर। और ऐसे एक लाइन ड्रॉ की जाती थी, लाइन के पीछे पांच पांच के तादाद में लोग खड़े किए जाते थे। ओ माय गॉड, आई एम गेटिंग इमोशनल बाबा, ये सारी चीज़ें जब याद आती। आपके पास में भी पेपर प्लेन बना के अगर कभी उड़ाए उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं जरूर बताइएगा। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी।
1: Forgotten memories refreshed like a gold. ये है like a gold. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 128 Indian rupees 15 paise. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, 1 gram of gold coin every week when you're sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: The Evening Show with Ashwini.

0: Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: भाई जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। कितना सुंदर, कितना इनोसेंट प्यार, इनोसेंस वाला जो एक गाना कभी कभी मुझे लगता है, मुझे ये ऐसे गीत एक तो ठहराव वाले गीत लगते हैं। अच्छा, इस फिल्म का नाम भी गीत है। 1970 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, गीत महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाज़ में, जिसके सपने रोज हमें आते रहे। व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक। आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, आप लोग डिनर टाइम में क्या चल रहा है, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं बता रहे हैं। बहुत से लोग ऑब्वियसली आम, जी हाँ आम, नॉट दैट आम, इट्स लाइक फल फ्रूट वाला आम। जी हाँ, वीकेंड हमारे यहाँ पे भी आम का बॉक्स आया हुआ है, मैंगोज़ का बॉक्स आया है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे मैंगोज़ के बॉक्सेस लाए हैं। बिल्कुल, ये सीजनल फ्रूट है, इन्जॉय करना ही चाहिए, सीजनल फ्रूट भी खाना चाहिए। नाइवली हम लोग यहाँ पे रहते हैं तो हमें तो पूरे साल भर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो सीजनल ना होते हुए भी हमें मिल जाती है, इसलिए है ना। ओके, तो अब ज़रा बात करते हैं गुड न्यूज़ अराउंड द वर्ल्ड। एम्स्टरडेम इज़ इन्वेस्टिंग $100,000 इन टाइनी स्टेयर केसेस टू सेव कैट्स फ्रॉम ड्राउनिंग इन द कैनल्स। बहुत बढ़िया भाई। टू प्रोटेक्ट डोंकीज फ्रॉम सफरिंग, सेंटोरिनी हैज़ बैंड टूरिस्ट ओवर 220 pounds फ्रॉम राइडिंग देम। मतलब ज़्यादा वजनदार जो लोग हैं वो डोंकीज पे बैठ के राइड नहीं कर पाएंगे टूरिस्ट अभी। And Brazil gives up to 5 years in prison to anyone who abuses dogs and cats. अरे 5 क्या, 10 होना चाहिए भाई, तब समझ में आएगा। ये एनिमल्स एक तो बोल नहीं सकते, अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, और ना जाने क्यों हम इंसानों को इनसे प्रॉब्लम है। ये चुपचाप अपनी ज़िंदगी जीते हैं भाई, होना ही चाहिए, ऐसी चीज़ होनी चाहिए। हंगरी जस्ट इंस्टॉल्ड स्पेशल थर्मल शेल्टर्स टू प्रोटेक्ट स्ट्रे डॉग्स फ्रॉम एक्सट्रीम विंटर कोल्ड। फैंटास्टिक, दैट वॉज रियली गुड। Yeah, that was a good step. France has officially banned the use of wild animals in circuses. Thank God. चढ़ावा चढ़ाना चाहिए अभी, है ना। सर्कस में एनिमल्स के कितने हाल होते थे, हम सभी ने छोटे जब हम थे तब हमने जाके सर्कस देखी, इन्जॉय की, तब पता नहीं क्यों इतने शायद कॉन्शियस नहीं थे या थोड़े हल्के से कॉन्शियस थे कि उन्हें एनिमल्स को मारा जाता था स्टिक से, दैट सो दैट दे कैन जंप, यू नो ऑल दो स्टफ। आई एम रियली हैप्पी, ये सारी चीज़ें ना फटाफट होनी चाहिए दूसरे देशों में। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 100 years द ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन हैज शोन अ डॉक्यूमेंटेड इंक्रीज। फैंटास्टिक। जायंट पांडाज, मुझे एक तो पांडाज ना बहुत अच्छे लगते हैं। जायंट पांडाज आर नाउ ऑफिशियली नो लॉन्गर एंडेंजर्ड। अरे मैं रोज़ इतने इनके वीडियोज़ देख रही हूँ ना, मुझे बड़ा मज़ा आता है। आप लोग ना सच में पांडाज के वीडियोज़ देखिएगा, खुश रहेंगे, खुश। हाँ, फ्रॉम एपिग्लॉटिस, शाहरुख खान ने कहा था ना किसी मूवी में। ब्यूटीफुल ट्रैक आप सबके लिए पाकीज़ा फिल्म से। इसका मैं जनरली इस गाने का वॉल्यूम आप रखती हूँ क्योंकि इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हुए हैं, हम एक्चुअली ध्यान से अगर सुनें तो एक एक इंस्ट्रूमेंट हमें बहुत अच्छे तरीके से सुनाई देता है। स्पेशली एट द एंड ऑफ दिस सॉन्ग जो ट्रेन की सीटी बजती ना, ट्रेन इंजन की सीटी, आई Absolutely love that.
0: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Leica Gold. Ashwini in for Anisa Nasir for the evening show.

लाइका गोल्ड। हे देयर, मैं हूं बाली ब्रह्मभट्ट। कैच मी ऑन माय शो गोल्ड आफ्टरनून्स विद ट्रिब्यूट्स, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने ऑन लाइका गोल्ड एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स फ्रॉम 1 PM टू 4 PM। इमोशन ऑफ द डे।

0: emotion of the day. Like a extra podcast update.
1: Podcast number 17, Domestic Violence, which was hosted by Deep Raja, is out now and you can watch it. Is domestic violence only physical abuse? As South Asians, do we downplay the situation? बहुत सारे points इसमें discuss किए गए हैं. Like our extra podcast available on Spotify, YouTube, Amazon, Apple and other major streaming platforms.
0: Like our extra is here. This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रैवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
2: ट्रैवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड
2: विजिट travelhubworld.com
0: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith, Hamari Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Like Our Radio.
3: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
4: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
3: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
4: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
3: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
4: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
3: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
5: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
6: Minar Jewelers. अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मिनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com कॉल 0208-767-7627
0: Like a Radio Network Proud Hospitality Partner Ragasan Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Ashwini, brightening up your weeknights.
7: Ye hai.
8: Leica Gold.
7: Leica Gold.
0: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: For £1, you'll get 128.83 Indian rupee, 374.31 Pakistani rupee, 441.57 Sri Lankan rupee, 165.07 Bangladeshi taka, 84.13 Afghani.
8: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply.
8: LEICA Gold.
0: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £107.83 per gram.
0: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
1: चलिए मिला लेते हैं घड़ियां देखते हैं टाइम कितना हुआ है इट्स 48 मिनट्स पास्ट 8 आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी सेकेंड आवर का फीचर इमोशन ऑफ द डे टुडे इज टेरिफिक ट्यूसडे तो हमने सोचा क्यों ना आपको टेरिफिक सॉन्ग सुना दिया जाए ओ प्रिया, दैट वाज द सॉन्ग, कौन है जो सपनों में आया, झुक गया आसमान। ये फिल्म सभी को याद रहती है क्योंकि राजेंद्र कुमार बिल्कुल अपनी जीप, ओपन जीप चलाते हुए वो टेढ़े मेढ़े रास्ते से जा रहे हैं, है ना। ओके, द लास्ट ट्रैक ऑफ दिस आवर, उसकी तरफ लेके चल रही हूँ आपको, लता मंगेशकर सुरेश वाडकर की आवाज़ में, बहुत ही फैंटास्टिक ट्रैक, प्यासा सावन से, मेघारे मेघारे। आई जस्ट लव दिस ट्रैक, एक तो मुझे सारे गाने बड़े अच्छे लगते हैं। सुनिए, वही हमें ले चलेगा अगले आवर की तरफ।
9: सेवन स्टेशंस, वन पॉडकास्ट, वन मोबाइल ऐप, दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क ऑफरिंग द लार्जेस्ट एशियन रेडियो एंड

0: Accessories. Find everything under one roof. Kajal's Couture. Now open 7 days a week.
1: Kajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear. All in one destination.
2: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
3: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना, दिशा बासमती राइस।
4: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड, अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड। दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस।
5: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
6: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy! Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
7: Wherever you want to go, for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
8: No more worries for me or you.
9: Southall Travel, at all protected.
10: This is the Leica Radio Network. You heard? The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or sales@leicamedia.co.uk.
11: The Evening Show with Ashwini.
10: Another huge giveaway is coming. Leica Radio Network.

0: बड़े ही फैंटास्टिक ट्रैक्स के साथ में आप और हम तीसरे आवर का आगाज कर चुके हैं। मोहरा फिल्म से सुनाया पंकज उदास साधना सरगम की आवाज़ में ना कचरे की धार। एक्चुअली ये गीत मैंने खुद ने बहुत टाइम बाद सुना है और बहुत सारे हमारे लिसनर्स ने कहा कि क्या बात है यार, बड़ा लवली ट्रैक सुनाया। उसके बाद हमने अनुराधा पौडवाल एंड अमित कुमार की आवाज़ में तेजाब फिल्म से सुनाया कह दो कि तुम। अगले ट्रैक्स की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले एक फैक्ट। अगर आप में से कोई ब्लैक कपड़े ज़्यादा पहनते हैं तो पीपल हु वेयर ऑल ब्लैक आर मोर लाइकली टू बी सीन एज रिलायबल, सीरियस एंड कॉन्फिडेंट। एक्चुअली ये तो रीजंस हैं, साथ में स्लिम भी दिखते हैं ना, इसलिए भी ब्लैक पहनते हैं। ओके 9:16, दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी और आप सबने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो लंदन में एंड लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर में। फर्स्ट आवर में यादों की बारात, सेकेंड आवर में इमोशन ऑफ द डे एंड थर्ड आवर गजल या कव्वाली। कल था मंडे, आज है ट्यूसडे, क्या सुनाऊंगी आज मैं? कोई अंदाज, कुछ अंदाज लगाना चाहते हैं? एनी गैसेस क्या हो सकता है? अब गेस करते रहिए। अगला गीत जो है आराधना फिल्म से मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में, व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक दिस वन इज, गुनगुना रहे हैं भवरे।
1: अश्विनी ब्राइटनिंग अप योर वीक नाइट्स,
2: ये है
3: लाइका गोल्ड।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: For £1 in British sterling, you can get up to 128 Indian rupees and 15 paise. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: The Evening Show with Ashwini.

0: ऐसे रिफ्रेशिंग लगा ना ये जो गाना था. एक तो गुनगुना रहे भंवरे, ये जिस तरीके से गाया गया ना, अपने आप भंवरे हमारे सामने गुनगुनाने लगते हैं. ऐसे वो एक कोई तो वो गार्डन में बहुत सारे रोजेस दिख रहे हैं, बहुत सारे फूलों वाला एरिया दिख रहा है, उसमें वो भंवरे घूम घूम करके घूमते हुए दिख रहे हैं. जी, दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी. मंडे से फ्राइडे रहता है आपका और मेरा साथ शाम 7 बजे से लेके रात 10 बजे तक. तो हमारी गोल्ड नाइट सर्विसेज ओवरनाइट सर्विस है, इसे ज़रूर सुनिएगा. रात में नींद नहीं आ रही है, लड़ाई झगड़ा हो गया है, अब मूड अच्छा करना है, काम कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, गोल्ड नाइट ज़रूर सुनिएगा. लाइक अ रेडियो 90s वाले बच्चों के लिए और 90s के बच्चों के मम्मी पापा के लिए और उनके बच्चों के लिए भी है ना. लाइक अ रेडियो पंजाबी, जो पंजाबी गीत पसंद करते हैं, लाइक अ गोल्ड. तो नॉन स्टॉप हमारे पे म्यूज़िक चलता ही रहता है, बहुत सारी वेरिएशन, बहुत सारी चॉइसेस हैं आपके पास, तो ज़रूर इन्जॉय करते चलिए. अगला ट्रैक जो होगा दैट आर्टिस्ट ऑफ द वीक. हमारी आर्टिस्ट ऑफ द वीक है अनुराधा पौडवाल. पूरे सप्ताह अनुराधा पौडवाल जी के गीत आपको सुनाने वाले हैं. उसके बाद जी हाँ, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने दिया सही जवाब, कव्वाली सुनाने वाली हूँ. तो आज की कव्वाली लता मंगेशकर शमशाद बेगम की आवाज़ में मुगले आजम से 1960 में ये रिलीज हुई थी. तो आप और मैं अभी सीधे मिलते हैं कव्वाली के बाद. इट्स 23 minutes past 9.
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Hey, Marcus Waring here. Cooking a balanced meal is my forte. But did you know most of us aren't getting enough omega-3 in our diets? Life often gets in the way. So I top up with 7C's omega-3 max strength. It helps support my heart, brain and vision so I can keep doing what I love. 7C's omega-3. Keep doing what you love.
3: Daily 250 milligrams EPA and DHA supports normal heart function. Daily 250 milligrams DHA supports normal brain function and vision. And DNS 2019-23.
1: This is Ashwini, in for Anissa Nazir, on The Evening Show.
4: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
5: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
4: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
5: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
4: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
5: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
4: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
6: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
7: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
6: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
7: गारंटेड
6: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे. साउथ हॉल ट्रेवल,
7: फोन 02085748410.
6: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 02 03963 5757. Greens by Danube, prime location,
8: high appreciation
9: in Dubai.
10: Search is changing.
11: Customers aren't just using Google anymore.
10: They're asking AI.
11: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
10: One business, one recommendation.
11: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
10: Will your business be the answer?
11: Or the one that got left behind?
10: The future of search has already started.
11: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
10: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
12: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસમાં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે.
13: બીએપીએસ મંદિરનો ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર.
12: યુરોપના 3-9 દિવસના ટૂર્સ,
13: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
12: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ.
13: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે.
12: કોલ 02089002323. ધ સ્ટાર ટૂર્સ,
13: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન.
14: સો યુ ડીકેફ ઓટ મિલ્ક એક્સ્ટ્રા બટ નોટ પાઇપિંગ હોટ 4 પમ્પ્સ ઓફ કેરામેલ નો શુગર સ્મોલ લાટે ઇન અ લાર્જ કપ. That will be 10 minutes.
15: No worries. I'm having fun on PlayOjo.
16: Keep it fun with PlayOjo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
14: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
15: Thanks. Playtime's over. Mmm, lovely.
17: Feel the fun. PlayOjo.
18: 18 plus, gamble aware.
19: Like a ghoul. London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB Digital Radio par Alexa pe bolo play Like a Gold aur online suno likeagold.com pe.
20: Artist of the week is brought to you by our new podcast Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: मिला लेंगे घड़ियां एक बार. कितना टाइम हुआ है? इट्स 38 मिनट्स पास्ट 9. आप सभी ने ट्यून इन किया है द इवनिंग शो विद अश्विनी. ये जो गीत अभी हमने सुना, तेरी महफिल में किस्मत आजमा के हम भी देखेंगे, एक्चुअली कितने सारे चैलेंजेस इसमें देख लिए ना, चैलेंजेस एक्सेप्ट किए गए हैं इस गीत में. हम ये भी करके देख लेंगे, हम वो भी करके देख लेंगे, हमने ये सहन किया है, हम वो भी. आई मीन फैंटास्टिक. जब लिरिसिस्ट लिखते हैं तो कितनी फीलिंग्स, कितने इमोशंस उसमें डालते हैं, है ना. मज़ा आ जाता है ये सब सुन के. धीरे धीरे हम चल रहे हैं अब. यस, वी आर मूविंग टुवर्ड्स करेंसी रेट्स एंड और थोड़ी गपशप हो जाएगी. और कौन से गीत सुनाने वाली हूँ बताती हूँ बस कुछ ही देर में.
0: द इवनिंग शो विद अश्विनी,
1: ये है लाइका गोल्ड. 10:35 AM.
3: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल. एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ. सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे.
0: दिस इज अश्विनी इन फॉर अनीसा नज़ीर on the evening show. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on travelhubworld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call travelhub 24/7 on 0208-782-8833 or visit travelhubworld.com.
4: travelhub, best service with unbeatable price
0: at all protected.
4: Visit travelhubworld.com.
5: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
6: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
5: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
6: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
5: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
6: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
5: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
7: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
1: Atif Aslam live in the UK.
7: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
1: Book your tickets now at AXS.
7: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
1: Exclusive radio partner, Leica Radio.
8: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
9: Your call is important to us. You are currently number 25 in the queue.
10: 25? Seriously?
9: Sounds like Ojo time.
10: Nice idea. Feel the fun with Play Ojo, the online casino with all the latest live casino and slot games. New players get 50 free spins on Big Bash Bonanza, plus instant payouts on winnings.
9: Sorry about the wait. How can I help?
10: You can help me celebrate. I won.
11: Feel the fun. Play Ojo.
12: First deposit only. Most wins are instant. 18 plus. Gamble aware. T's and C's apply.
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: For £1, you'll get 128.77 Indian rupee, 374.54 Pakistani rupee, 442.87 Sri Lankan rupee, 165.05 Bangladeshi taka, 84.13 Afghani.
11: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
11: Leica Gold.
13: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
2: Gold is currently trading at £107.83 per gram.
13: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
2: ओके जी, लास्ट टाइम एक बार टाइम चेक कर लेते हैं. इट्स 43 मिनट्स पास्ट 9, 26th ऑफ मई. टेरिफिक ट्यूसडे हो रहा है यहाँ पे एंड कंग्रेचुलेशंस. ट्यूसडे आपने और हमने मिलके पार कर लिया. कल का मेरा फेवरेट डे वेंसडे. दो दिन इधर दो दिन उधर. आई डोंट नो, एक अजीब सी एनर्जी मुझ में आ जाती व्हेन इट कम्स टू वेंसडे ना. बड़ी खुश होती हूँ मैं. ओके जी, हमेशा की तरह दो तीन बातें रिमाइंडर्स हैं छोटे छोटे. ये दिस विल बी अ न्यू रिमाइंडर टू ऑल ऑफ यू. अगर कोई आपकी अपॉइंटमेंट्स हैं, डॉक्टर की है, सॉलिसिटर्स के साथ हैं, काउंसिल टैक्सेस हैं, काउंसिल के कुछ फाइंस भरने, देख लीजिए, चेक कर लीजिए. सेकंड, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, प्लीज़ इसे कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं. दो गाने जो मैं लास्ट आपको सुनाने वाली हूँ, रात और दिन फिल्म से लता मंगेशकर मन्नाडे की आवाज़ में दिल की गिरह खोल दो. ओहो, ब्यूटिफुल ट्रैक. एंड लास्ट वन इज अकलमंद. 1984 में ये फिल्म रिलीज हुई थी. आई लव यू किशोर कुमार एंड एस जानकी की आवाज़ में. आई लव यू ऑल, मतलब आप लोगों की वजह से तो इतने उत्साह में, इतने एंथुजियाज़म में मैं कूदती फांदती ड्राइव करते हुए, लेन्स चेंज करते हुए पहुंच जाती हूँ अपने स्टूडियो. आप सबका साथ पाती हूँ और बहुत सुंदर मेरा समय यहाँ पे आप सबके साथ जाता है. प्यार काफ़ी है ज़िंदगी जीने के लिए, तो प्यार दो, प्यार लो. एंड आई एम श्योर आप लोग कोई भी अपने पावर का यूज़ नहीं करते होंगे, क्योंकि पावर तो किसी को बर्बाद करने के लिए चाहिए. अदरवाइज प्यार दो, प्यार लो. एक तो कम जिंदगानी. बस यहीं पे रुक जाएंगे हम. अपने आपका खूब ख्याल रखिएगा. सी यू ऑल टुमारो. वेदर भी अच्छा है, मैं जादू की छड़ियाँ से घुमा के जा रही हूँ. कल आप सबको वेदर अच्छा मिलेगा. गुड नाइट, टेक केयर.
13: दिस इज लाइक अ गोल्ड. The Evening Show with Ashwini.

0: बॉलीवुड के लेजेंड कलाकार सिर्फ लाइका गोल्ड पर।
1: ना तो आज बरसात का मौसम, ना कहीं छाई बदरिया, फिर भी मोरे जिया रम चमके, अरे थम थम कोई बिझुरिया।
2: बाह बाह बाह, तो हर जवाब नहीं,

0: जैसे 2 बजे तक श्रीमद् भागवत पारायण और शालिग्राम पूजा भगवान विष्णु के 1000 नामों के साथ, साथ ही हर शनिवार श्री राज राजेश्वर गुरु जी के साथ सुंदर कांड पाठ और हनुमान चालीसा हीलिंग दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक। स्थान 22 मामस्टर रोड हैरो HA37RR। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 0208426 0678 और विजिट सिद्धाश्रम ऑफिशियल वेबसाइट।
1: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com। T&Cs apply।
2: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

0: भोले वाले ललुआ
1: बोले बोले बोले बोले बोले बोले
0: भोले वाले ललुआ खाए जा रोटी बासी।
2: यही खा के तो जवान होगा बेटा।
0: भोले वाले ललुआ खाए जा रोटी बासी, बड़ा होके बनेगा साहेब का चपरासी। खेल खेल खेल माटी में होली खेल, गाल में गुलाल है न जुल्फों में तेल।
3: अरे अपनी भी जवानी क्या है सुनत है वार।

0: सजनी तू काहे आई नगरी हमारी।
1: जा भग जा भग भग।
0: सजनी तू काहे आई नगरी हमारी, हरेगा विदेश बाबू बहिया तिहारी। थाम थाम थाम गोरी जरा थाम, नहीं लुट जाएगी राम का।

0: ये है लाइका गोल्ड, द वॉइस दैट टचेस एवरी सोल। स्टार एक्सप्रेस प्रेजेंट्स हरिहरन्स सोल इंडिया
1: लाइव इन लंदन। Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
0: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
1: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
2: राम कृष्ण हरी। यूके तयार आहात ना? ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार व्हायला येत्या 6 जून ला होते वाद्य महोत्सव 2026 रॉयल विंडसर रेस कोर्स SL4 5JJ। 100 ढोल 80 ताशे मराठी खाद्य संस्कृतीची चव घ्यायला आणि मराठी उद्योजकांना भेटायला नक्की या। महाराष्ट्राची परंपरा, संस्कृती आणि आनंदाचा जल्लोष आणि विठ्ठल नामाचा गजर हा सोहळा तुम्हाला लाइव्ह बघायला नक्कीच आवडेल। थेट भारतापासून यूके पर्यंत सर्वांना जोडणारा एकच नाद वाद्य महोत्सव। किट्स आता उपलब्ध आहे svrtuk.org। जय हरी विठ्ठल।
3: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
4: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
3: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
4: गारंटेड
3: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
4: फोन 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
1: Atif Aslam live in the UK.
5: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
1: Book your tickets now at AXS.
5: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
1: Exclusive radio partner, Laika Radio.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: Classic Mehmi, aapke apne Laika Gold par.